पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 3 तारीख, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल

0: मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और DTH पर सुन सकते हैं, और इसके अलावा एंड्रॉयड और iOS पर एक एप्लीकेशन है न्यूज ऑन AIR, जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं।
2: यह है विविध भारती।
1: वंदन वार

चिंतन। बाबा साहब अंबेडकर का कथन है, मनुष्य का जीवन महान होना चाहिए, ना कि लंबा।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कांड। प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:35। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम संगीत सरिता में सुबह 6:45 पर श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग, इसका दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं शकुंतला नरसिम्हन। पुराने फिल्मी गीत सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुबह 7:00। 7:30 पर कार्यक्रम होगा हम है राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा पहले सुबह 8:15 पर और फिर दोपहर 2:00। कार्यक्रम चित्रलोक सुनिए सुबह 8:30 पर और रात 8:15। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर हमारा कार्यक्रम आज का अखबार प्रसारित होगा सुबह 9:30 पर। सुबह 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो चंडीगढ़। आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्लिप रोड ना रोकें। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के अंतर्गत पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के अभिनय सफर की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी दिन में 11:00। दिन में 11:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो सिटी ब्यूटीफुल। नाट्य तरंग कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक सुनिए चंदन वृक्ष। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुन सकते हैं शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम नॉन स्टॉप नगमे।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा। हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

कार्यक्रम अमृतवाणी होगा शाम 6:30 पर, शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत। आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम में आज महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकिजाकू केंगुरसे की शौर्य गाथा प्रसारित की जाएगी। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे झलकी सुनिए मैरिज एनिवर्सरी। रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए। नौ बजकर 30 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित रहेगा। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब सुने कार्यक्रम रामचरित मानस कांड।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोतागण नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसा राग के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे एक तरीके से मॉडर्न या आधुनिक कहा जा सकता है। कुछ राग ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हजार वर्ष के पूर्व प्रसिद्ध हैं और थे, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना हाल ही में हुई थी। कतन कुतूहलम इसी प्रकार का एक राग है। पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर, जो एक वाग्यकार थे, करीब 100-150 साल पहले इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में शामिल किया था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासक राज्य करते थे और विलायती बैंड संगीत सुनने को मिलता था। पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर ने इस राग को पाश्चात्य बैंड संगीत की शैली में बनाया और स्वर इस प्रकार लगते हैं।

अर्थात इसमें लगने वाले स्वर शुद्ध हैं। यह 29वां मेलकर्ता राग धीर शंकराभरणम से जन्य है, तो स्वर शंकराभरणम के अर्थात बिलावल के शुद्ध स्वर लगते हैं। राग कतन कुतूहलम का चलन इस प्रकार है।

क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ पाश्चात्य धुन बज रहा हो? लेकिन यह बताना जरूरी है कि वेस्टर्न बैंड संगीत पर आधारित होते हुए भी राग कतन कुतूहलम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पद्धति का ही एक नमूना माना जाता है, अर्थात इसको अच्छी तरह शामिल कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पाश्चात्य संगीत की झलक इसमें होने के कारण इसे शास्त्रीय कोश में शामिल नहीं कर सकते। भला कर्नाटक पद्धति हो या हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत हो, हमारी भारतीय प्रथा में सदा दूसरी सभ्यताओं में से कुछ अंश ग्रहण करके अपना लेना और उसे एक भारतीय रूप देकर उसकी शोभा बढ़ा देना, यह हमारी विशेषता है, हमारी परंपरा की विशेषता है, हमारी कला की विशेषता है। तो आइए अब सुनते हैं राग कतन कुतूहलम में शेष गोपालन की आवाज़ में मुत्तैया भागवतर की एक रचना। यह कृति आदि ताल में है, अनुपल्लवी के बाद अर्थात अंतरा के बाद एक चिट्टस्वरम यानी बंदिश सरगम जुड़ा हुआ है, जिसमें आप राग कतन कुतूहलम का स्वरूप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सुनिए विद्वान शेष गोपालन की आवाज़ में राग कतन कुतूहलम में मुत्तैया भागवतर की एक रचना।

0: जरा दूं कृपा करो कि
1: राग कतन कुतूहलम में सबसे ज्यादा मशहूर एक कीर्तनम है त्यागराज रचित, जो है रघुवंश सुधाम बुधि, जिसकी रचना पटनम सुब्रमण्य अय्यर ने खुद की। तो उसका भी एक छोटा सा झलक मैं दे देती हूँ आपको।

0: अभी आप सुन रही थी जल तरंग पर राग कदन कुतूहलम। कलाकार थी अन्यम पट्टी एस गणेशन और एस तंदपानी। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का आगाज एक ही रास्ता फिल्म के गाने से करते हैं। हेमंत कुमार की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत खुद हेमंत कुमार का है।

अंदाज फिल्म का ये गीत था। संगीतकार थे नौशाद, लता मंगेशकर की आवाज थी। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

आर पार फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर की तर्ज थी और गीता रॉय की आवाज़ थी। आज है मजरू सुल्तानपुरी की याद का दिन और आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर।

फरीब फिल्म का ये गीत आपने सुना और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लाजवंती फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। संगीत एस डी बर्मन का।

0: इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

सुने हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गाने के साथ बजरू सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन की तर्ज।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: इसी के साथ अब आज का हम ही रही प्यार के कार्यक्रम खत्म होता है। प्रतीक्षा समय
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम ही रही प्यार के। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग

0: स्थित दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत

0: एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर

0: 3 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुने कार्यक्रम त्रिवेणी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
3: मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता, उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है, वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है, तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे, तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे, तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास। विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

हम नमन कर रहे हैं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। एक ऐसे गीतकार जिन्होंने फिल्म उद्योग में एक लंबी पारी खेली, युग बदलते रहे लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी गीतकारी की दुनिया के एक रोशन सितारे बने रहे।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: 1267 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आइए सुनिए चित्रलोक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले

भारति से आप चित्रलोक सुन रहे हैं। आज जाने माने संगीतकार राजेश रोशन का भी जन्मदिन है और हम उन्हें दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
3: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फिल्मकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो राइट? तुमने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें? राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
2: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: मेरी अखियां रूहानी कहीं, मेरा चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमया थारे जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के अभिनय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
1: मैं हसरत पे शूट कर रही थी तब मुझे एक फोन आया कि हिमानी जी मैं यश चोपड़ा का बेटा बोल रहा हूँ आदित्य चोपड़ा कि मैं एक फिल्म लिखता हूँ एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं भी ऐसी थी मैंने कहा कि आई एम शूटिंग इन बांद्रा तो आप आ जाइए मुझसे मिल लीजिए। कोई ऐसे उनको बुला नहीं सकता पर वो बेचारे आए और मैं शूटिंग कर रही थी हसरत की तो वो इन बिटवीन शॉट्स मुझे स्टोरी सुनाते थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इंटरवल तक पहुंचे तो मैंने कहा आदि आई लव योर स्टोरी और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमने करी एंड दैट ऑल्सो बिकेम सुपर डुपर हिट।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र निजे प्रस्तुत कार्यक्रम आज का अखबार। आज का अखबार आज का अखबार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर की ओर से सवेर वाली नमस्ते है जी। और सुनाइए दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह आज भी हमारी यही दुआ है आप सब स्वस्थ रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी का सफर तय करें। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम हर रोज थोड़ा थोड़ा पेट्रोल और थोड़ी गैस बचाएंगे तो ना सिर्फ हमारी जेब पर बोझ कम होगा पैसे बचेंगे बल्कि हम देश की भी मदद करेंगे। छोटी छोटी हादसों में बदलाव कर हम बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर आप स्कूटर मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं तो अपने वाहन की सर्विस नियमित तौर पर करवाते रहें सही हवा वाले टायर और साफ इंजन कम पेट्रोल खर्च करते हैं। कहीं पास ही जाना है तो पैदल चले जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें और अगर आप एक ही सोसाइटी से गली से मोहल्ले से एक ही तरफ जा रहे हैं तो कार पूलिंग अपनाएं। इससे ना सिर्फ पेट्रोल बचेगा बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होगा। और अगर हम रसोई गैस की बात करें तो खाना बनाते समय हमेशा बर्तन को ढककर ही खाना बनाएं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें हमेशा छोटे बर्नर का इस्तेमाल करें गैस जलाकर खाली बर्तन रखने से बचें और जरूरत ना होने पर तुरंत गैस बंद कर दें। पेट्रोल और गैस की बचत कर हम सिर्फ पैसों की ही बचत नहीं करते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखने में भी मदद करते हैं। तो आइए पेट्रोल और गैस बचाएं देश को आत्मनिर्भर बनाएं।

0: इन्वेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में बारी है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के अभिनय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे
1: मैं हसरत में शूट कर रही थी, तब मुझे एक फोन आया कि हिमानी जी, मैं यश चोपड़ा का बेटा बोल रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा, कि मैं एक फिल्म लिखता हूँ एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं भी ऐसी थी, मैंने कहा कि आई एम शूटिंग इन बांद्रा, तो आप आ जाइए मुझसे मिल लीजिए। कोई ऐसे उनको बुला नहीं सकता, पर वो बेचारे आए और मैं शूटिंग कर रही थी हसरते की, तो वो इन बिटवीन शॉट्स मुझे स्टोरी सुनाते थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इंटरवल तक पहुंचे तो मैंने कहा आदि आई लव योर स्टोरी, और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमने करी एंड दैट ऑल्सो बिकेम सुपर डुपर हिट।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में बारी है रीजनल और लोकल हेडलाइंस की। पंजाब में रोजगार मेले के दौरान रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा द्वारा 11वें कन्वोकेशन समारोह का आयोजन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विद्यार्थियों को प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह द्वारा सिविल सर्जनों को गर्मी के कारण होने वाले रोगों के लिए तैयार रहने और मेडिकल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान अंबाला में 120 युवाओं और पलवल में 93 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कल रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 950 विद्यार्थियों को डिग्री और 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। मौसम विभाग द्वारा पंजाब और हरियाणा में लू की चेतावनी। हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने के संकल्प को जन आंदोलन बनाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार। चंडीगढ़ का रेवेन्यू मैप होगा डिजिटल, जमीनों का टोपोग्राफिकल सर्वे और डीमार्केशन शुरू, एक क्लिक पर डाटा। चंडीगढ़ शहर बनेगा नॉर्थ इंडिया का एजुकेशन कैपिटल। 150 एकड़ पर सारंगपुर में बनेगा एजुकेशन सिटी। 2031 के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में बड़े बदलाव। और पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स कोर्सेज के लिए 9 जून तक करें आवेदन। ये थी रीजनल और लोकल हेडलाइंस।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।

0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: मेरे अखियां रूहानी कहीं, मेरे चेहरा नूरानी कहीं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग
2: देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के अभिनय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे
1: मैं हसरत में शूट कर रही थी, तब मुझे एक फोन आया कि हिमानी जी, मैं यश चोपड़ा का बेटा बोल रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा, कि मैं एक फिल्म लिखता हूँ एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं भी ऐसी थी, मैंने कहा कि आई एम शूटिंग इन बांद्रा, तो आप आ जाइए मुझसे मिल लीजिए। कोई ऐसे उनको बुला नहीं सकता, पर वो बेचारे आए और मैं शूटिंग कर रही थी हसरत की, तो वो इन बिटवीन शॉट्स मुझे स्टोरी सुनाते थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इंटरवल तक पहुंचे तो मैंने कहा आदि आई लव योर स्टोरी, और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमने करी एंड

0: also became a super duper hit.
1: तो सुनना न भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे। आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का हमारा विषय है, वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्लिप रोड ना रोकें। आप भी अपने विचार हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। दोस्तों, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम में से हर कोई जल्दी में है। कोई ऑफिस पहुंचने की जल्दी में है, कोई स्कूल, कोई बाजार, तो कोई अपने घर। लेकिन इस जल्दबाजी में हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही एक लापरवाही कभी कभी बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी आप वाहन चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें और स्लिप रोड कभी भी ना रोकें। आपके क्या हैं विचार, हमारे साथ जरूर बांटिए। नंबर फ्लैश हो रहा है, बात करके देखते हैं कौन श्रोता ऑनलाइन है। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो,
1: नमस्कार जी, मैं संजीव ठाकुर बोल रहा हूँ शिमला से।
0: संजीव ठाकुर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाए?
0: बहुत बढ़िया है। और शिमला का मौसम कैसा है?
1: बहुत ही सुहावना है यहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है, बीच में तूफान चलता है, लेकिन गर्मी नहीं है चंडीगढ़ की तरह।
0: जी जी, तो आज का जो हमारा विषय है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: ट्रैफिक नियमों के बारे में आप जैसे बता रहे हैं, तो लोगों को काफी ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है और कॉमन सेंस बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत है। काफी लोग जो है बहुत रैशली ड्राइव करते हैं, सिग्नल दिए ही और स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं, ओवरटेक भी बहुत गलत तरीके से करते हैं। तो क्योंकि आपको पता ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली बात है, तो आपको पता एक बार ही चांस मिलता है। अगर थोड़ी सी भी गलती कोई कर ले तो फिर उम्र भर के लिए, या कई बार बहुत ही डेंजरस भी हो जाता है।
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली बात ही होती है। देखिए, कुछ सेकंड्स का ही फर्क होता है ना?
1: जी जी,
0: जब हम लोग डिसीजन लेते हैं। और कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो, आपने सही कहा कि गलत ओवरटेक करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं
1: जी,
0: है ना? तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि रेड लाइट आमतौर पर वो जंप कर देते हैं
1: जी।
0: बात चालान की नहीं होती है, बात होती है जिंदगी की।
1: हाँ जी,
0: है ना? तो वही बात है कि बेशकीमती जिंदगी को दाव पर लगा देते हैं लोग।
1: मैंने ये भी देखा जाता ना जी कि ओवर स्पीडिंग से भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स और गलतियां होने के चांसेस होते हैं। उसमें आपके पास फिर अपने आप को बचाने का या रिकवर करने का या सोचने का टाइम भी कम मिलता है। ओवर स्पीडिंग, जैसे रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है इंडिया में, तो लोग काफी ओवर स्पीडिंग करते हैं, उस वजह से मुझे लगता है कि काफी चांसेस होते हैं एरर।
0: लेकिन बात वही आ जाती है, ओवर स्पीडिंग करनी क्यों? अगर आपने कहीं पहुंचना है तो 10-15 मिनट पहले आप घर से चले।
1: हाँ जी,
0: है ना, ताकि आप टाइम पर जहां भी आपने पहुंचना है अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, जो सड़क पर दूसरे चलने वाले मुसाफिर हैं वो भी सुरक्षित रहें
1: जी।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? देखिए श्रोता, बहुत से ऐसे हैं जो जिनको हमने कई बार गुजारिश की है कि आप जब एक नंबर मिलाते हैं तो कृपया उसी नंबर पर बने रहें। आप सबकी कॉल हमारे लिए बेशकीमती है, तो थोड़ा सा सब्र करें। जहां आपने नंबर मिलाया है, जो भी नंबर मिलाया है, उस नंबर पर बने रहें। ये ना हो कि हम एक नंबर कनेक्ट करने की कोशिश करें, आप दूसरे पर चले जाएं, और दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो तीसरे पर चले जाएं, जैसा अभी हुआ। तो ऐसा कृपया ना करें। आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है, वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्लिप रोड ना रोकें। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। देखिए फिर से वही हो रहा है, नंबर जो फ्लैश हो रहा था हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन श्रोता दूसरे नंबर पर शिफ्ट हो गया, ऐसा ना करें। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी,
2: मैं सुनील धीर बात कर रहा हूँ जीरकपुर।
1: जी सुनील धीर जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया सर, आप सुनाए कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है।
2: ये जो आपने टॉपिक चुना है बहुत बढ़िया है सर
1: जी।
2: मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो लोग यूज करते हैं ना, जो स्लिप लाइन को, स्लिप रोड को ब्लॉक कर देते हैं, सबसे गलत काम है। जाना होता है सीधा, वो साइड में रोक लेते हैं, पता नहीं दो मिनट पहले नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा
1: जी।
2: ये सबको जो ड्राइविंग सेंस है वो होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात करें।
1: बिल्कुल, आपने देखिए जिस तरफ मुड़ना है अपनी गाड़ी पहले ही उस तरफ रखें। ये ना हो कि आपने दाएं बाएं मुड़ना है तो आप दाएं गाड़ी अपनी लगा के रखी हुई है आपने, या फिर आप एकदम से आ जाते आकर आप स्लिप रोड को ही ब्लॉक कर देते हैं, तो
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: दूसरे जो मुसाफिर हैं जिन्होंने उस तरफ मुड़ना होता है
2: जी,
1: उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
2: इमरजेंसी में भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, स्लिप रोड देखिए बनाया इसीलिए गए हैं ताकि अगर किसी ने निकलना है तो उस तरफ से निकल जाए, है ना। तो जो सीधे जाने वाले हैं वो भी स्लिप रोड को ब्लॉक करके बैठ जाते हैं।
2: बिल्कुल बैठ जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जब लाइसेंस दिया जाता है ना, उस समय उनको बताना चाहिए। और 90% लोग तो इंडिकेटर भी नहीं यूज करते, हमें उसके सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ता है
1: जी।
2: पता नहीं सीधा जाने वाला है, राइट में जाने वाला है कि लेफ्ट में जाने वाला है, ये भी पीछे वाले को नहीं पता लगता।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, कई बार तो हम गाड़ी के अगली गाड़ी के टायर को देखते हैं किस तरफ मुड़ रहा है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिकेटर भी नहीं देते, आपने बिल्कुल सही कहा, और यही बड़े बड़े हादसों का कारण भी बनती है चीजें।
2: बिल्कुल सही बात है,
1: है ना।
2: बिल्कुल सर।
1: तो स्लिप रोड, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्लिप रोड का उद्देश्य, उनको पता ही नहीं है क्या क्यों बनाई गई है स्लिप रोड, है ना।
2: बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर मस्ट होना चाहिए
1: जी।
2: पीछे वाले को पता लगना चाहिए कि भाई कहाँ जाना है, किस तरफ जा रहा है बंदा, सीधा।
1: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई गाड़ी वाले
2: चलाता है गाड़ी
1: जी, कई गाड़ी वाले तो अचानक मोड़ देते हैं बिना किसी इंडिकेशन के।
2: बिल्कुल।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो,
3: कौन से

0: माया शर्मा बोल रहे चंडीगढ़ से।
1: कौन बोल रहे हैं?
0: माया शर्मा।
1: माया शर्मा जी, आपका जो फोन है आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए।
0: सर नेटवर्क में। हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी, बीच में आवाज खराब हो रही है आपकी माया शर्मा जी।
0: मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मुझे आपका अच्छा लगा आज का वो विषय भी यही है।
1: जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ।
1: जी माया शर्मा जी, माया शर्मा जी बोलिए।
0: हम ड्राइव ही कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं।
1: जी
0: तो मैं जो वो मुझे अच्छा लगा कि स्लिप रोड पे नहीं जाना चाहिए, स्लिप रोड क्लोज नहीं करनी चाहिए।
1: जी
0: और साथ में जो मैं हमेशा हस्बैंड को भी बोलती हूँ, इंडिकेशन दो, इंडिकेशन दो, फटाफट मैं उसको बोल देती हूँ। हाँ तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है और हम तो बहुत ट्रैवल करते हैं इसलिए हमें अच्छा लगता है।
1: चलिए आप अपने हस्बैंड को समय समय पर कहती रहती हैं कि इंडिकेशन दो, इंडिकेटर दो, इंडिकेटर दो, ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को पता चल जाए आपने किस तरफ मुड़ना है।
0: हाँ जी,
1: है ना, ताकि सबका जो सफर है वो सुरक्षित रहे।
0: हाँ जी, वही ना, सुहाना सफर होना चाहिए
1: जी।
0: और हमें तो वो पुराने गीत लगा दो और आपकी बातें सुनते रहो और सफर अच्छा कर जाता है।
1: चलिए माया शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
0: मैं हमेशा भी लाती हूँ पर आज मिल गया।
1: चलिए शुक्रिया।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के अभिनय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे
2: मैं हसरत में शूट कर रही थी, तब मुझे एक फोन आया कि हिमानी जी, मैं यश चोपड़ा का बेटा बोल रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा, कि मैं एक फिल्म लिखता हूँ एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं भी ऐसी थी, मैंने कहा कि आई एम शूटिंग इन बांद्रा, तो आप आ जाइए मुझसे मिल लीजिए। कोई ऐसे उनको बुला नहीं सकता, पर वो बेचारे आए और मैं शूटिंग कर रही थी हसरत की, तो वो इन बिटवीन शॉट्स मुझे स्टोरी सुनाते थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इंटरवल तक पहुंचे तो मैंने कहा आदि आई लव योर स्टोरी, और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमने करी एंड दैट ऑल्सो बिकेम सुपर डुपर हिट।
1: सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे। और दोस्तों आपको याद दिला दें कि आज 11:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो सिटी ब्यूटीफुल, जिसमें आप अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुन पाएंगे। और आज जिन फिल्मों से आप अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं दिल का क्या कसूर, साथी, सर, रंग और खलनायक। इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है

0: रेडियो चंडीगढ़। और आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है, वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्लिप रोड ब्लॉक ना करें। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोट खाई से। और मैं इस टॉपिक के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब हम कहीं जाते हैं ट्रैफिक नियम का पालन जरूर करें, और ट्रैफिक के नियम का पालन हमें करना चाहिए, और ये हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ट्रैफिक का नियम इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम पुलिस से डरते हैं, लेकिन ये हमारी सुरक्षा

0: ट्रैफिक नियम का पालन जरूर करें और ट्रैफिक के नियम का पालन हमें करना चाहिए और ये हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ट्रैफिक का नियम इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम पुलिस से डरते हैं, लेकिन ये हमारी सुरक्षा के लिए है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए, सुरक्षित सफर के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, है ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो बड़े अच्छे ड्राइवर हैं तो, लेकिन सड़क पर सिर्फ वो वाहन नहीं चलाते बल्कि दूसरे लोग भी हैं जिनकी गलती का असर आप पर भी पड़ सकता है, इसलिए चौकन्ने रहना भी बहुत जरूरी है, है ना।
0: क्योंकि एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक हादसा हुआ था, एक बच्ची गाड़ी के पीछे नीचे आ गई थी, लेकिन वो गाड़ी चला रहा था तो उसने पैदल जा सकते पर उसकी 4 साल की उम्र की मौत हो गई। तो जब इतनी लाख रुपए की मदद को एक बच्चे को भी खो दिया और उसको भी क्या बोलते जेल में जाना पड़ा।
1: देखिए सबसे बड़ी बात यही है, जब भी आप वाहन लेकर सड़क पर निकलें ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। देखिए बहुत से लोग तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, है ना, वाहन चलाते हैं, तेज रफ्तार खाली सड़क पर रोमांचक लग सकती है लेकिन दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन जाती है कई बार, है ना। इसलिए सड़क पर जो स्पीड लिमिट के जो बोर्ड लगे होते हैं ना उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। ये स्पीड लिमिट के बोर्ड यूं ही नहीं लगाए जाते, इसमें देखिए जो इंजीनियर्स होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सर्वे करते हैं कि किस तरह की सड़क पर कितनी स्पीड की जरूरत है, तो आप हमेशा स्पीड बोर्ड जो लगे होते हैं उनका पालन जरूर करें, है ना। और देखिए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग भी जरूर करें,
0: जरूर करें बिल्कुल।
1: और जब भी आप मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हैं तो सिर पर हेलमेट जरूर पहने। बहुत से लोग हैं जो हाथ में हेलमेट लेकर चल पड़ते हैं, हाथ में हेलमेट लेने का क्या फायदा, है ना। जब आपके पास हेलमेट है तो अपने सिर की सुरक्षा जरूर करें, क्योंकि जब सर पर चोट लगती है तो बहुत बड़ा एक कारण होता है जान जाने का, है ना। इसलिए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें जब भी आप दो पहिया वाहन चलाते हैं, और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें जब आप कार चलाते हैं। तो और इससे भी बड़ी बात जो है कि वाहन चलाते समय बिल्कुल भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपको जरूरी फोन करना है तो पहले साइड में गाड़ी रोकें, फिर अपनी बात कर लें, उसके बाद गाड़ी चलाएं।
0: जी
1: चलिए राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए,
0: धन्यवाद।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: बचकुला 8 सेक्टर मार्केट से फजलू खान।
0: जी फजलू खान भाई बोलिए।
1: सर ऐसा है कि देखो चलान के लिए जब हम अपने आप में अपनी हिफाजत नहीं रखेंगे, अपने आप में अपनी देखभाल नहीं रखेंगे और हर एक चीज की लापरवाही करेंगे तो चलान तो होंगे ही होंगे ना।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन
1: बंदा आया एक, उसका 100 से ऊपर स्कूटर के चलान थे, तो वो कहने लगा कि मेरा अपना केस कोई भी किनो वकील नहीं ले रहा है। तो वो ये बताइए सर कि अपना कोई क्या करेगा?
0: आप देखिए
1: जी,
0: चालान को भी शर्म आ गई होगी ना।
1: चालान को भी शर्म आई
0: कि इंसान को शर्म नहीं है तो चालान को तो आ गई होगी
1: जरूर,
0: कि बार बार एक ही बंदा देखिए 100 चालान कम नहीं होते हैं, है ना।
1: 100 से ऊपर चालान सर को अपने मुंह से बता रहा
0: हूं। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी ट्रैफिक नियमों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।
1: कल वो बंदा खुद मेरे पास में आया तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी। मैं कहा भाई मैं क्या हेलमेट नहीं लेके चलते, आप किसी चीज के लिए नहीं देखभाल करते तो आपको चोट नहीं लगेगी तो क्या होगा?
0: देखिए हर साल हमारे देश में लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
1: जी जी जी।
0: और इनमें से ज्यादातर हादसे जो होते हैं ना वो ऐसे ही लोगों के होते हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, लापरवाही बरतते हैं
1: जी,
0: है ना। तो देखिए सबसे बड़ी बात आज ये है कि अगर हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो इनमें से कई दुर्घटनाएं जो हैं वो रोकी जा सकती हैं।
1: और मैं अपने ऊपर क्या कह सकता हूँ सर कि इनका अल्लाह का शुक्र है कि इनका मेरा अभी तक भी कि इनका मेरे को इतने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए स्कूटर चलाते हुए कभी मेरा कोई चलान नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और इस चीज के लिए हमारे को अपना में, क्योंकि हम अपनी देखभाल अपने आप देते हैं।
0: बिल्कुल आप खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ऐसा ना हो कि आप सोचते हैं कि आगे पुलिस वाला खड़ा है तो आप सही ढंग से चला रहे हैं और
1: जैसे ना,
0: बिल्कुल जैसे ही आपने चौक पार किया जहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें।
1: क्योंकि नहीं होना चाहिए,
0: बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जिंदगी चली जाती है, दोबारा नहीं मिलती।
1: बिल्कुल सच्चाई बात है।
0: इसलिए खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
1: खुदा हाफिज़।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया फोन करने के लिए। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? हेलो, आवाज आ नहीं रही आपकी। कौन बोल रहे हैं?
2: मैं किरण बात कर रही हूँ।
0: किरण जी कहाँ से बात कर रही हैं?
2: सर मैं कुपन से बात कर रही हूँ।
0: जी किरण जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं?
2: सर मैं आज के बारे में नहीं पाई।
0: हेलो

0: तो आप बता।
1: आज हमारा जो विषय है वो है वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्लिप रोड ना रोकें।
0: जी सर, हमें ट्रैफिक नियम करना चाहिए। मतलब जैसे
1: किरण जी, एक तो आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए, आपकी आवाज जो है वो बीच में चली जाती है।
0: जी सर, अब आ
1: रही। जी, जहाँ नेटवर्क एरिया है आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको नेटवर्क मिल रहा है, वहाँ खड़े होके आप बात कर लीजिए।
0: जी सर, अब आ रही है।
1: जी
0: सर, सबसे पहले
1: मोबाइल अपने पास रखिए आप। मैडम, मोबाइल अपने मुंह के पास रखिए।
0: सर, हमें रेड सिग्नल मिले तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, रेड लाइट कभी भी जंप नहीं करनी चाहिए।
0: जी सर, क्योंकि उसमें हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, साथ में किसी और लोगों का भी नुकसान कर बैठते हैं।
1: जी चलिए किरण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
0: जी सर।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के अभिनय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे
1: मैं हसरत में शूट कर रही थी, तब मुझे एक फोन आया कि हिमानी जी, मैं यश चोपड़ा का बेटा बोल रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा, कि मैं एक फिल्म लिखता हूँ एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं भी ऐसी थी, मैंने कहा कि आई एम शूटिंग इन बांद्रा, तो आप आ जाइए मुझसे मिल लीजिए। कोई ऐसे उनको बुला नहीं सकता, पर वो बेचारे आए और मैं शूटिंग कर रही थी हसरत की, तो वो इन बिटवीन शॉट्स मुझे स्टोरी सुनाते थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इंटरवल तक पहुंचे तो मैंने कहा आदि आई लव योर स्टोरी, और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमने करी एंड दैट ऑल्सो बिकेम सुपर डुपर हिट।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे। और श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज दिन में 11:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो सिटी ब्यूटीफुल, जिसमें आप अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। और आज जिन फिल्मों से आप अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं दिल का क्या कसूर, साथी, सर, रंग और खलनायक। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्लिप रोड ना रोकें। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो
3: हाँ भैया, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
3: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जांगड़े जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: तो आज का जो हमारा विषय है वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्लिप रोड ना रोकें, क्या कहना चाहेंगे?
3: अब यही कहेंगे भैया, बचपन से हम इस ओर मतलब सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है भैया, हम लोग जैसे दोपहिया वाहन में ज्यादा जाते हैं तो हेलमेट लगाना सबसे ज्यादा मतलब सुरक्षित और जरूरी चीज है।
0: जी बिल्कुल।
3: और अभी जैसे गर्मी का समय है तो भैया हेलमेट लगाना तो दोनों तरफ से फायदेमंद है, मतलब जितना ये लू और तापमान ज्यादा बढ़ा है तो वो पूरी तरह से हमारे सिर को सुरक्षित रखेगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
3: और जो भी नियम होते हैं भैया, जैसे सड़क में अलग अलग चिन्ह बने होते हैं, और जैसे गाड़ी में चलते हैं तो उसमें इंडिकेटर वगैरह होता है, पासिंग लाइट वगैरह होता है, तो सबका अच्छे से नॉलेज रखेंगे तो काफी काम आता है भी समय समय पर।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, सुरक्षित ड्राइविंग करते हैं, तो ना सिर्फ हम सुरक्षित रहते हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे मुसाफिर वो भी सुरक्षित रहते हैं।
3: और वर्तमान समय में भैया मतलब सड़क सुरक्षा या सड़क पर चलना सही सेफ चलना हमारे लिए सबसे बड़ा हम चैलेंज मानकर चलते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम अपना वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम लोग खुद तो सुरक्षित ड्राइविंग करेंगे ही, दूसरों का भी ध्यान रखेंगे, है ना
3: जी,
0: ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। और देखिए सुरक्षित ड्राइविंग केवल एक आदत नहीं बल्कि संस्कार होना चाहिए। जब बच्चे अपने माता पिता को नियमों का पालन करते हुए देखते हैं ना सड़क पर, तो वो भी सीखते हैं
3: जी।
0: तो इसलिए बच्चों के सामने तो जरूर आप ये चीज जरूर करें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहे।
3: जी
0: चलिए योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
3: जी,
0: शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूत है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये

से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर जो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या।

0: भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई
1: क्या है करिश्मा, कैसा खिल्लवाड़ है,
0: जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही जीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही जीने में भौंकता का डर है।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। और आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है, वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्लिप रोड ना रोकें। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: रमेश कपूर जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सी कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ सर जी।
0: तो आज का जो विषय है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जिंदगी लंबी है, रास्ता छोटा है, ऐसे में बचाव किए जाए सबकी भलाई है
0: जी।
1: जिंदगी तो लंबी है जी, सड़क पे उतरने से पहले हम देख लें कि हम ठीक हैं, हमारी तबीयत ठीक है, हमें नींद तो नहीं आ रही
0: जी।
1: जब हम फिट नहीं होंगे तो सड़क पे क्या उतरेंगे जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: दूसरों को भी अपना परेशानी में डालेंगे। कोई नशा तो नहीं किया हुआ जी?
0: जी जी जी।

0: इंजेक्शन लिया हो, मेडिसिन ली हो,
1: जी जी
0: कई बार मेडिसिन ली होती है, ड्राइवर को नींद आ जाती है जी।
1: बिल्कुल ऐसे में देखिए बहुत बड़ा खतरा होता है एक्सीडेंट होने का
0: जी। जब फिट नहीं है ड्राइवर तो सड़क पे उतरना बहुत खतरनाक है।
1: बिल्कुल आपने ये जो सब आपने बताई बातें, उसके अलावा देखिए सबसे जरूरी यही होता है कि कभी भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और ना ही शराबी ड्राइवर के साथ आप जाएं।
0: ये सब ट्रैफिक नियम में आते हैं जी।
1: जी बिल्कुल,
0: रूल एंड रेगुलेशन में आते हैं। बाकी ओवरलोडिंग ना करें। एक ऑटो में मैंने 14 आदमी पर्सन बैठा के ले जाता जी ऑटो वाला लालच में।
1: आप देखिए सतीश जी, एक दिन ऐसे ही मैं जा रहा था तो ऐसे ही ओवरलोड किया हुआ था ऑटो और पलट गया
0: जी। जी
1: सवारियों को इतनी चोटें आईं, तो थोड़ा सा इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए उनको भी।
0: बाकी साथी ऐसा है, रॉन्ग साइड ना चले, अपना लेन ना बदले
1: जी।
0: जहाँ ओवरटेक जोन नहीं है वहाँ ओवरटेक ना करे, बहुत स्पीड से ना चलाए।
1: बिल्कुल,
0: रास्ते में हॉस्पिटल आता है, स्कूल आता है, प्रेशर हॉर्न भी बजाते हैं लोग,
1: गलत बात है।
0: हाँ पटाखे चलाते हैं जी बच्चे, यहाँ पे साइलेंसर पे पटाखे भी चला लेते हैं,
1: लेकिन
0: वो भी बहुत हार्मफुल है जी।
1: बिल्कुल वो बैन है, पूरी तरह से बैन है इस तरह
0: जी।
1: डरावने हॉर्न हो गए, इस तरह के जो हॉर्न है वो बिल्कुल बैन है, ऐसा ना करें जिससे सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो।
0: बाकी जहाँ क्रॉसिंग नहीं है वहाँ क्रॉसिंग ना करें जी।
1: चलिए सतीश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। हेलो प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सर
1: जी। गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं ममता बात कर रही हूँ।
1: ममता जी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: सर मैं कोठी से बात कर रही हूँ
1: जी। बोलिए फटाफट क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। ममता जी क्या कहना चाहती हैं?
2: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब भी हम गाड़ी में जाते हैं, छोटी गाड़ी है, तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए
1: जी। बिल्कुल,
2: और ये है सर कि जब पे हमें रेड लाइट दिखती है तो हमें उससे छूट जाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।

इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं मीनाक्षी कालिया, हमारा नमस्कार। हेलो हेलो, कुछ आपके कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के चौथे एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार। 200 आज यादों का कारवां श्रृंखला में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा का वो एपिसोड जिसमें हमने आपकी मुलाकात बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी से करवाई थी। तो लीजिए सुनिए यादों का कारवां में अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के अभिनय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। जिंदगी नामा शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां। दोस्तों आज जिंदगी नामा प्रोग्राम में हमारे साथ बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने रंगमंच से लेकर टीवी और फिर भारतीय सिनेमा पर अपनी अभिनय कला की गहरी छाप छोड़ी है। दूरदर्शन के धारावाहिक हमराही में इनका निभाया देवकी भौजाई का किरदार बहुत ही लोकप्रिय हुआ। 100 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अपनी अभिनय कला का परिचय दिया, हम सबका मनोरंजन किया है। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, बंधन, हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, नानू की जानू, इस तरह की कई फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। फिल्मों के अलावा टीवी के पर्दे पर भी अपनी कला का बखूबी परिचय दे रही हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है।
1: ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आखिर उस लड़की ने किया क्या है? पड़ी रहती तू सड़क पर, बीमार हो जाती या गुंडे उठाकर ले जाते, तब पता चलता तुझे। सच कहूं, वो लड़का मुझे पहली नजर में ही अच्छा लगा। मीना, उससे अच्छा लड़का तुझे मिल ही नहीं सकता। मुझे देख, शादी के बाद जो खुशियां मुझे मिलनी चाहिए थी कहां मिली। बंबई से यहां तक वो लड़का बार बार तुझसे टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर वाले ने वो लड़का तेरे लिए ही बनाया हो। जा मीना, जाके रोक ले उसे, कहीं वो इतनी दूर ना निकल जाए कि तुझे कभी ना मिल सके।
0: हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत अभिनेत्री और जिंदा दिल इंसान हिमानी शिवपुरी की। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
0: सबसे पहले बात करते हैं आपके बचपन की, तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? सुना है बहुत ही शरारती थी आप।
2: मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी कि मैं देहरादून में पैदा हुई और मेरे पिताजी डॉक्टर हरिवर भट्ट शैलेश डून स्कूल में पढ़ाते थे। तो और डून स्कूल इतना खूबसूरत स्कूल है कि वो

0: ये मतलब पेड़ है, मैदान है बड़े बड़े, और हम लोग जब मेरा बचपन बीता ना तो हम लोग बिल्कुल जैसे बंदर होते ना, हम पेड़ों पे उछलते कूदते रहते थे। और एक फील्ड होती थी और उसमें एक बड़ा सा चौड़ा सा पेड़ था, उसको रोमांटिक बुश कहते थे। तो मैं, मेरा भाई और पूरी हमारी वानर सेना ना, हम कूदते रहते थे। और मेरी नानी के घर जो भी, जो उनकी देहरादून में है, तो वहां पर भी बड़े लीची के पेड़, आम के पेड़, तो हम लोग उन पेड़ों में, तो मतलब हम आधे बंदर थे, बहुत शैतान थे।
1: जी हिमानी जी, बहुत ही मजेदार बचपन बीता आपका। शुरू से ही आप अभिनेत्री बनना चाहती थी। रंगमंच और साहित्य की बात करें तो रंगमंच और साहित्य में आपका रुझान कब हुआ, किससे प्रेरित हुई आप?
2: इसका श्रेय मैं पूरी तरह अपने पिताजी को देना चाहती हूँ। वो लिखते थे, साहित्यकार थे, और वो डून स्कूल में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। और वो वन ऑफ द फ्यू राइटर्स हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने माउंटेनियरिंग पे बहुत सारी किताबें लिखी है। उनकी किताब गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य अपने आप में एक अनूठी किताब है। तो हमारे घर में बड़ा साहित्यिक सा माहौल था, बड़े बड़े साहित्यकार आते थे, और एक साहित्य सदन था, एक कल्चरल सोसाइटी जिसकी बैठकें हमारे घर में होती थी। मेरे पिताजी ये मानते थे हमेशा कि मतलब मैं भी मतलब कभी डांस कर रही हूँ, कहते थे बच्चे को डांस सीखना चाहिए, उन्होंने मुझे भरतनाट्यम की क्लास में डाला, म्यूजिक सिखाते थे, आर्ट पेंटिंग की क्लास में, और मैं तो ये सब करती रहती थी। तो मम्मी कहती थी अरे भाई जिसकी शादी हो जाए, हम टॉकिंग अबाउट ये तब की बात है कि ये देखिए लड़की को ये सब भी आना चाहिए, खाना बनाना, कपड़े धोना। तो पापा कहते क्यों, मेरी बेटी और बेटा दोनों बराबर है, उस वक्त कहते थे। वहीं से शायद जो मेरे कला की जो प्रेम है वो पैदा हुआ होगा। और साथ ही में मैं हमारे जो स्कूल में नाटक होते थे उनमें मैं भाग लेती थी, स्कूल प्लेस जितने भी होते थे, और जितने भी एक्टिंग प्राइजेस थे वो मैंने जीते। मुझे याद है जब मैं तीसरी बार बेस्ट एक्टर्स कप जीत रही थी तो हमारे जो हेडमास्टर थे तो उन्होंने कहा था हिमानी यू आर मेकिंग इट अ हैबिट। तो वो प्यार शायद वहीं से पैदा हुआ, लेकिन ये कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको अपना प्रोफेशन चुनूंगी, क्योंकि वो उस वक्त देहरादून, अब तो उत्तराखंड का पार्ट है, उस वक्त यूपी का पार्ट था, और यूपी में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि थिएटर एज अ प्रोफेशन लेगा। मैं यही सोचा था, और पढ़ने में होशियार थी उस वक्त, ये मान्यता थी कि जो पढ़ने में होशियार थे वो साइंस लेते हैं। तो मैंने साइंस ली, थिएटर मैंने कंटिन्यू किया। तो एमएससी आके वो जो 9 to 5 वो जो लेक्चर्स होते थे ड्राई, और लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे, हाइड्रोजन सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह मिक्स करके, और जो शाम को मैं थिएटर करती थी तो उसमें बहुत मजा आता था, आनंद आता था, बहुत सारे नाटक किए। उस दौरान एनएसडी की वर्कशॉप हुई, तब मुझे पता चला कि भैया एक इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान में जो आपको बाकायदा थिएटर की ट्रेनिंग देता है। उस वक्त गूगल तो थे नहीं कि आपको सब पता लग जाता है। उसी वक्त मुझे स्कॉलरशिप मिली थी एमएस स्टडी करने के लिए अमेरिका में। तो मैंने चुपचाप से एनएसडी का फॉर्म भर दिया और दिल्ली आई, और उसका वीजा का इंटरव्यू देने के लिए, और साथ में चुपके से एनएसडी का इंटरव्यू दे दिया। सिलेक्शन का जब लेटर आया तो मैंने घर में बताया कि मैं तो भाई वहां नहीं जा रही हूं, अमेरिका, मैं तो एनएसडी। तो काफी विरोध हुआ हमारी फैमिली में, शहर में, छोटे शहर की बात ये होती है कि हर एक कोई एक दूसरे को जानता है। जब ये पता चला कि ये स्कॉलरशिप छोड़ के वहां जा रही है, सबने बोले बताओ भर्जी की लड़की तो दिमाग खराब हो गया, इसका पागल हो गई क्या, इतना अच्छा करियर छोड़ के थिएटर जा रही। तो मेरे पिताजी ने भी समझाने की कोशिश की, उन्होंने बोला बेटा देखो अमेरिका हो, पढ़ के आ जाओ, थिएटर तो ठीक है कर लेना, तुम बाद में भी कर लेना। तब मैंने पापा को यही बोला कि पापा देखो मेरे पास हो सकता है बहुत पैसा हो, लेकिन आई डोंट वांट टू हैव दिस रिग्रेट कि मेरा एक सपना था इसको मैं पूरा नहीं किया। उसके आगे पापा कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि थैंक गॉड वो काफी, मैंने बताया कि ही वाज अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन, और वो ये विश्वास करते थे कि एक इंडिविजुअल को अपनी करियर, अपनी चॉइसेस चुनने का अधिकार है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर ये तुम डिसीजन ले रही हो तो थोड़ा सोचो। तो उसका श्रेय उनको जाता है। तो मैं एनएसडी आ गई।
1: जी, जब आपने एनएसडी ज्वाइन किया तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के दौरान और नाटकों के दौरान वहाँ किस तरह का अनुभव आपको हुआ, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: बहुत अच्छे टीचर्स आए, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स आए। शुरुआत ही जो मैंने नाटक किया था विद्या सुंदर, किया था कारण जी के साथ, और उसके तुरंत बाद जो कि एक स्टाइलाइज प्ले था जिसमें नाच गाना सब कुछ था, और एमके रैना साहब आए और उन्होंने जेकब का चेरी का बगीचा, तो वो एकदम से कॉन्ट्रास्ट था कि मैंने एक रोल किया रेनर्स काया का, जो कि एक 60 साल की और

0: और उसी दौरान हम लोग स्टानिस्लावस्की भी पढ़ रहे थे। तब एक्टिंग की बारीकी की वो पूरा जो एक्टिंग का स्कूल होता है कि ये कैसे पैदा होगी, कि पूरी उसकी आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है कि वो उसके पूरा जीवन 60 सालों का। तो आई थिंक एज एन एक्टर वो मुझे बहुत मदद किया उस रोल ने।
1: जी, और जब आप एनएसडी से पास आउट हो गई तो क्या रुझान रहा आपका, आपने फिल्मों की तरफ रुख किया?
0: मुझे तो थिएटर ही करना है, उस वक्त मेरे ये जुनून था। तो मैंने कहा मैं बम्बई नहीं जाऊंगी, और घर से भी मेरे को ये था कि पैसा नहीं लेना है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना है, विच इज वेरी इम्पॉसिबल कि थिएटर में आप अपना जीवन खुद कैसे करेंगे, किसी से पैसे नहीं लेने। तो एक रेपर्टरी थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, तो हमको 600 रुपए मिलते थे उस वक्त। तो 600 रुपए में मैं मतलब एक किराए का कमरा लिया, 200 तो 200 रुपए वो किराया देते थे और बाकी 400 में हम अपना खाने वाने का खर्चा चलाते थे। और मैंने एनएसडी रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन की एज एन अप्रेंटिस, और उसके बाद मैं थिएटर की मेरी एज ए प्रोफेशनल एक्टर शुरू हुई। तो मैं रेपर्टरी में 10 साल रही और एक जूनियर मैं पहले शुरू किया था। मैं हाँ, बहुत बड़े एक्टर्स रहते थे, सुरेखा सिकरी, उत्तरा जी, मनोहर भाई, तो हम लोग पीछे भाला लेकर खड़े होते थे इनके, या क्राउड में रहते थे। और धीरे धीरे आई बिकेम वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स ऑफ एनएसडी रेपर्टरी कंपनी, ए ग्रेड आर्टिस्ट हो गई, और मेरे बहुत सारे रोल मैंने किए जो आज भी लोग याद करते हैं, जैसे मित्रों मरजानी है, आजर का ख्वाब है। वो जो फिल्म से पहले मैंने अपना करियर एक्चुअली स्टार्ट किया टेलीविजन से, दूरदर्शन से ही मेरे करियर की शुरुआत हुई, मतलब इन द सेंस कि लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। जब पहला सीरियल बन रहा था दूरदर्शन में हम लोग, उसके लेखक थे मनोज श्याम जोशी और प्रोड्यूसर थे कुमार वासुदेव जी, तो दिल्ली में ही हो रहा था। मनोज श्याम जोशी तो थिएटर वो लोग देखते थे, तो उन्होंने देखा था कि अच्छी एक्ट्रेस, तब उन्होंने मुझे बुलाया था छुटकी के रोल के लिए। उस टाइम मैं थिएटर क्रेजी थी, तो मतलब मेरे को बुलाया कि ये रोल है, छुटकी का रोल है, और हफ्ते में दो बार, आजकल तो 6 दिन आते हैं सीरियल, हफ्ते में 2 दिन आएगा। मैं कहा हफ्ते में 2 दिन, और थिएटर तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। मैं कहा नहीं भाई, ये मुझसे नहीं होगा, थिएटर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तो मैंने वो मना कर दिया। काफी साल के बाद ये सीरियल को भी मनोज श्याम जोशी ने लिखा था, हमराही को तब, और उसका लेकिन प्रोड्यूसर बॉम्बे में थे, तो वो ढूंढ रहे थे किसी एक्ट्रेस को, हमको एक अच्छी एक्ट्रेस चाहिए, जैसे लोग पूछते ना कि यहाँ नहीं मिल रही है कोई, वहाँ है कोई, तो मनोज श्याम जोशी, क्योंकि वो उस सीरियल भी उन्होंने लिखा था, तो मनोज श्याम जोशी ने कहा एक एक्ट्रेस तो है, अच्छी है वो, लेकिन वो थोड़ी पागल है, क्योंकि वो हम लोग ने तो मना कर, अब उसे पूछ के देख लो कि अगर वो अग्री करेगी तो कर लेना। तो मैं रेपर्टरी थी ना, वो जगह जगह हम लोग जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस जाके परफॉर्म करते थे, मद्रास हो गया, बैंगलोर हो गया, कैलकाटा हो गया, बॉम्बे भी हम परफॉर्म कर रहे थे। तो उस वक्त मेरे 4-5 नाटक वहाँ पे मैंने परफॉर्म किए, नेहरू सेंटर पृथ्वी थिएटर में, एक मित्रों मरजानी था, आजर का ख्वाब था, शर्विलक था जिसमें मेरी वसंत सेना की भूमिका थी, और एक प्रसन्ना जी का प्ले था सेंटर फ्यूजियामा। तो जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे कुंवर सिन्हा और ज्योति सिन्हा उनकी वाइफ, तो उन्होंने देखा, उन्होंने आई वॉज डूइंग डिफरेंट रोल्स, तो उनको लगा होगा, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया उस वक्त, क्योंकि मैं इस वक्त मेरे सफर में आई हैड बिकम वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स इन द रेपर्टरी कंपनी। तो मुझे लगा कि अब मेरे जीवन में मतलब आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, आपको लगता है कि आप इसके बाद क्या होगा। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड भी अलाइव थे, तो मेरे हस्बैंड ही वाज मोर ओपन टू गोइंग टू बॉम्बे, मैं बॉम्बे कभी जाना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने बोला चलो ले लो, क्योंकि उनको भी रोल मिल रहा था, लेट्स टेक इट। तब वो ऑफर मैंने लिया, और हम लोग सब कुछ अपना इधर खत्म खुतम करके किराए के मकान में रहते थे, एक दो चार एक अलमारी थी या कुछ, उसको बेच बाज के बॉम्बे पहुंच गए।
1: तो इस तरह से आपको हमराही मिला, देवकी भौजाई का कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ,
0: हमराही किया, और फिर वहाँ से तो क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो गया कि रोल्स आने लगे।
1: जी, और अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की शुरुआत किस तरह से हुई, किस फिल्म से आपकी एंट्री हुई बॉलीवुड की अगर बात करें तो?
0: सूरज बड़जात्या जी ने भी मेरा नाटक देखा था आजर का ख्वाब, वो फिल्म लिख रहे थे अपने, बननी शुरू हो रही थी हम आपके अकाउंट, तो उनका फोन आया, उन्होंने बोला हिमानी जी आपके लायक रोल तो नहीं, आप तो बहुत अच्छे बड़े बड़े रुकिए सी माई प्लेस, तो आप एक बार, मैंने आपका उस कैरेक्टर, क्योंकि आजर का ख्वाब में एक मुस्लिम कैरेक्टर मैंने किया था हज्जो, तो आप उस स्टोरी सुन लीजिए, और अगर आपको लगे, अब मेरे दिमाग में तो सब टेक्स्ट चल रहा है कि आई नीडेड वर्क कि अपनी कुछ का, तो खैर 3 घंटे का नरेशन हुआ विद सॉन्ग्स, और

उसपे उन्होंने चची जान का कैरेक्टर, तो मुझे तो काम चाहिए था, तो मैंने कहा कि आई वुड लव टू डू, और मुझे आई न्यू देम क्योंकि उनके साथ मेरे हस्बैंड काम कर चुके थे, ज्ञान शिवपुरी जी, तो मेरे को ये नहीं था क्योंकि नॉर्थ के आई हैड दिस की भैया फिल्म इंडस्ट्री पता नहीं कैसी है, तो इसलिए मैं उनके साथ काम कर सकती थी, तो मैंने यस कर दिया। तो इस तरह से मेरा फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। हालांकि उससे पहले मैंने छोटी फिल्म की थी अब आएगा मजा, लेकिन वो चली नहीं, जो फिल्म नहीं चलती उसका कुछ फ्यूचर नहीं होता। तो ये मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी हम आपके अकाउंट, और ये इतनी जबरदस्त हिट हो गई, तो मतलब फिल्मी करियर का सिलसिला चलता गया।

0: FM 107.2 News on AIR app और prasarbharati.gov.in पर AIR चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी नामा। आज इस कार्यक्रम में हम बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी की जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। हिमानी जी, DDLJ यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कैसे मिली आपको?
1: सीरियल बन रहा था हसरतें, जो कि अपने टाइम पे बहुत बोल्ड सीरियल, तो उसके लिए मुझे अप्रोच किया और मैं हसरतें शूट कर रही थी। तब मुझे एक फोन आया कि एक्सक्यूज मी हिमानी जी, मैं यश चोपड़ा का बेटा बोल रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा, कि मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं भी ऐसी थी, मैंने कहा कि आई एम शूटिंग इन बैंड्रा, तो आप आ जाइए मुझसे मिल लीजिए। तो अब तो उनका अपना ऑफिस है, कोई ऐसे उनको बुला नहीं सकता, पर वो बेचारे आए और मैं शूटिंग कर रही थी हसरतें की, एक बांद्रा में एक बंगलो था, तो वो इन बिटवीन शॉट्स मुझे स्टोरी सुनाते थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इंटरवल तक पहुंचे तो मैंने कहा आदि आई लव योर स्टोरी, तो आदि बोला कि नो हिमानी जी, योर रोल इज गोइंग टू कम इंटरवल के बाद, इंडिया आते इज गोइंग टू कम आफ्टर इंटरवल। आई सेड नो आदि, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। हालांकि और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमने करी एंड दैट ऑल्सो बिकेम सुपर डुपर हिट।

0: facebook.com/aarchandigarh पर AIR चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी नामा। आज इस कार्यक्रम में हम बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी की जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। अगर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त हिट रही फिल्म, लेकिन उसके क्लाइमेक्स की अगर हम बात करें तो वो जो रेलवे स्टेशन पर फिल्म के सभी कैरेक्टर्स वहां पर नजर आते हैं क्लाइमेक्स में, लेकिन सिमरन की भुआ यानी आप वहां से गायब थी, कहीं दिखाई नहीं दी, वो क्या कारण रहा?
1: जी वो क्या था कि जब हम लोग DDLG की शूटिंग कर रहे थे तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। एंड वो आपने सही कहा कि क्लाइमैक्स में सारे कैरेक्टर्स हैं, सब रेलवे स्टेशन में जो होता है वो जाता है, और मेरी भी स्टोरी अनुपम के साथ जो है उसका कल्मिनेशन होना था, पर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड क्योंकि मैं अकेली थी तो मेरे को ही सब, मैं लास्ट राइड्स आई टू गो, मतलब हॉस्पिटल से उनकी मॉर्ग से उनकी बॉडी, दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, उनको मॉर्ग से बॉडी कलेक्ट करना, फिर क्रिमेटोरियम बुक करना, फिर प्रार्थना सभा, वो सब आई वाज डूइंग। तो इस बीच मेरे को याद ही नहीं था कि मेरे को उधर जाना है क्लाइमैक्स की शूटिंग, बट फॉर्चुनेटली यश जी और पैमेला चोपड़ा जी का फ़ोन आया और आदे ने बोला कि आई अंडरस्टैंड है पानी जी, आपको क्लाइमैक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। सो आई वॉज वेरी टच, हालांकि उस वक्त मेरे में कुछ ख्याल नहीं था कि मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मैं एशेज लेके आई रिमेंबर मैं हरिद्वार गई थी तो वहाँ मेरा बेटा भी आया था, फिर मैं बेटी और माँ को लेके वापस आई केम टू बॉम्बे।
0: फिर उसके बाद आपने अपने आप को संभाला, आप सिंगल पेरेंट भी थी तो बेटे की पढ़ाई भी आपको देखनी थी, आपने अपना करियर भी देखना था, तो ऐसे में घर चलाना बहुत बड़ी बात होती है, किस तरह से मैनेज किया आपने बेटे की पढ़ाई और शूटिंग?
1: मुश्किल होता है एक औरत अकेली, मेरा एक छोटा बच्चा था और वो भी मुंबई जैसी महानगरी में, बट मैंने कभी किसी को ऐसे जाहिर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी औरतें एकदम बेचारी हो जाती है कि अरे हमारे तो हम अकेले हैं हमको काम दो। मैंने वो एक पहाड़ी एक महिला की जो वो होती है कि किसी के आगे मैं कभी झुकी नहीं, और मतलब मुझे अपने आप पे विश्वास था, और जो भी मेरा गम था या कुछ वॉट एवर माई पर्सनल लॉस, वो मेरा अपना पर्सनल लॉस, मैंने कभी किसी के आगे अपने को दुखियारी नहीं प्रस्तुत किया, क्योंकि मैंने अपने माय सन, मेरा बेटा बहुत छोटा था उस टाइम, तो आई रिमेम्बर वो हॉस्टल पढ़ रहा था, उसने कहा नहीं मैं बॉम्बे आके रहूँगा, तो आके मेरे साथ रहा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि मम्मी रहती, क्योंकि आप काम तो करना था, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि मुझे अपने को अपने बेटे को सपोर्ट करना था, तो आई हैड टू वर्क, और हमारे प्रोफेशन के टाइमिंग्स बहुत अजीब होते हैं, आपको भी पता होगा, तो ऐसे में मेरी जो माँ ने मेरा साथ दिया, मेरे पिताजी ने, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं छोड़ ही देती प्रोफेशन, हालांकि बहुत तकलीफ होती, लेकिन आई कंटिन्यूड वर्किंग, और जो होता है कि बच्चे को क्वालिटी टाइम मैं जरूर देती थी। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा एक समय था कि मैं सुबह 7 से 2 ऐड कर रही थी और 2 से लेके 8 बजे तक हसरते की शूटिंग कर रही थी, और रात को 9 से लेके सुबह 5 बजे एक फिल्म थी प्रेम ग्रंथ आरके प्रोडक्शंस में, वो कर रही थी, और सुबह आती थी मैं 5 बजे घर, और मेरे बेटे के एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं उसको पढ़ाने बैठ जाती थी, कभी मैथ्स कभी कुछ, तो मैं करीब 1 हफ्ते मेरे ख्याल से सोई नहीं होंगी, पर उस वक्त मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं, पता है मेरा, मुझे ये नहीं लगा कि उफ़ अब मुझे बेटे को पढ़ाना है, वो आई डिड इट आउट ऑफ माई लव फॉर माई सन।
0: हिमानी जी, आज बहुत सी महिलाएं हमारा ये कार्यक्रम सुन रही हैं, तो वो जरूर आपसे प्रेरणा लेंगी जिंदगी को किस तरह से जिंदा दिली से जिया जाता है। हिमानी जी, आपने जैसे बताया कि देहरादून आपका जन्म स्थान है, देहरादून में आप पली बढ़ी, तो अब जब आपका इतना नाम है, पूरी दुनिया आपको जानती है, आपको आपके चेहरे से पहचानती है, तो अब भी आप देहरादून जाती हैं?
1: फॉर्चुनेटली फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मैं दुनिया के काफी खूबसूरत जगहों में घूम पाई, लेकिन क्योंकि मेरी पैदाइश देहरादून में हुई है तो मेरा अभी भी मानना है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर देहरादून है, मेरा बर्थ टाउन, और जाहिर है, और मैं दिल्ली में भी काफी साल रही, तो दिल्ली में भी जब कभी मैं देहरादून जाती थी तो पहले तो

0: से आजकल तो मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट से जाती हूँ देहरादून, पहले तो रोडवेज की बस से ट्रैवल करती थी, और जैसे ही मोहंड आने वाला होता था तो मैं अपनी खिड़की खोल देती थी और ऐसे बाहर अपनी चेहरा निकाल के वो जो प्योर एयर है ना, जैसे ही वो साल के जंगल शुरू होते थे, और मुझे इतनी खुशी मिलती थी उस वातावरण उस एटमॉस्फेयर से कि मैं बहुत तरोताजा महसूस करती थी। और आज तक वो बात सच है। अब ये फर्क है कि अब एरोप्लेन की खिड़की से झांकती हूँ तो वो हरे हरी वादी दिखाई देती है, तो उससे मुझे बड़ा बहुत खुशी महसूस होती है।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो जो आपने कैरेक्टर्स किए हैं उनमें ज्यादातर बुआ के कैरेक्टर किए हैं, लेकिन आपने किए ऐसे हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता, तो ये कैसे किया आपने?
0: जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी कि वो भी एक सक्सेस का कारण होता कि आप बुआ में हिट होगी, डीडीएलजे हिट है, तो पता चला उधर फिल्म बन रही है बुआ, अरे हिमानी को बुलाओ बुआ के रोल के, तो हीरो नंबर वन में बुआ है। फिर परदेश बनाई सुभाष जी ने तो बुआ के लिए हाँ हिमानी को बुलाओ, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग या उससे डीडीएलजे की बुआ या परदेश की बुआ और हीरो नंबर वन की बुआ या जितनी भी और बुआ करी अलग करने की कोशिश की है। इसमें मैंने कोई खास कमाल नहीं किया है क्योंकि हर इंसान अलग होता है, एक फैमिली में भाई बहन होते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं, तो आई ट्राई टू मेक डिफरेंसेस।
1: हिमानी जी, रंगमंच, टीवी और आपकी फिल्मों की भी हमने बात कर ली, आप क्योंकि एक साहित्यिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं तो रंगमंच, टीवी और फिल्मों में एक्टिंग के अलावा आप लिखती भी हैं?
0: लिखने का शौक आई थिंक विरासत में मिला है, तो मैं पहले मेरी कुछ कहानियां मैगजीन आती थी उसमें छपी हैं, और इलस्ट्रेटेड वीकली एक मैगजीन होती थी उसमें आता था पोएट्री ऑफ द मंथ, तो उसमें भी मेरी कविताएं सेलेक्ट हुई, तो मैं बैठ के जो अपना स्पेयर टाइम होता है उसमें लिखती हूँ। और एक बच्चों के लिए एक मैंने एक नॉवल भी लिखा है, उसको फेयर करना बाकी है, मैं बहुत आलसी हूँ, मतलब लिखने की एक इच्छा भी है और लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत।
1: हिमानी, आप एक्टिंग के अलावा सामाजिक कार्य भी करती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
0: सोसाइटी ने हमको इतना कुछ दिया है, जब मैं बम्बई गई थी तो पैसा नहीं था, न रहने का ठिकाना था, अब भगवान की दया से थोड़ा बहुत है, मेरे पास गाड़ी है, रहने की जगह है, मैंने अपने बच्चे को खुद से, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो अपने बच्चे को एडुकेट किया, अपने पैरों पर खड़े रह के मैंने अपने परिवार को संभाला, तो अब मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि सोसाइटी को कुछ दो, तो छोटा सा प्रयास है मेरा कि मैं, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन ये है और मुझे काम ये आता है, तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में जाती हूँ जब भी समय मिलता है, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ वर्कशॉप करती हूँ, प्लेस डायरेक्ट करती हूँ, और जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो मैंने सोचा एक बेटी कैसे श्रद्धांजलि देगी अपने पिताजी को, तो मैंने कहा मेरा काम है थिएटर, तो मैंने उनकी बरसी पे उनकी कहानियों पे उनकी कहानी का मंचन किया, सुनहरे सपने, वहाँ के लोकल उत्तराखंड के बहुत पिछड़ा हुआ गरीब इलाका है, तो वहाँ के जितने भी स्टेट के पूरे लोगों को, बच्चों को, उनको प्रशिक्षण दिया, उनके साथ काम किया, और मैं हर साल जाके वहाँ भी नाटक करती हूँ पिताजी की कहानियों पे। और वैसे इन बातों को कहना नहीं चाहिए, पापा की बरसी पे मैंने दो जो लड़कियां थी बहुत ही पढ़ाई में होशियार थी, पर उनके फैमिली में डेथ हो गई थी पेरेंट्स की, एक अनाथ थी एक के फादर की, तो उनको एडुकेशन के लिए स्कॉलरशिप, ऐसा थोड़ा बहुत करती रहती हूँ जो संभव है, हालांकि बहुत कुछ करना चाहिए कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। हम लोगों ने वहाँ बॉम्बे में एक ऐसी एक ग्रुप बनाया है, तो हम जो हमारे सर्वेंट्स के बच्चे होते हैं ना बाइयों के, वहाँ बाई कहते हैं, तो उनके बच्चों को जब स्पेयर टाइम होता है तो उनको क्लासेस लेते हैं उनकी, थोड़ा सा अंग्रेजी बोलना या थिएटर के बारे में बताना, ऐसा कुछ पढ़ाने का काम करते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत से युवा लड़के लड़कियां स्टार बनने के सपने देखते हैं, मुंबई आने के सपने देखते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्योंकि आज ये कार्यक्रम देश में ही नहीं विदेशों में भी सुना जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी?
2: सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं तो उस सपने को कारगर करने के लिए आपको हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि बम्बई ऐसा शहर है जहाँ हर दिन करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं उनको चांस, तो आपको पेशेंस होने चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपनी कला में, अपने टैलेंट में, कि आप में कॉन्फिडेंस है और पेशेंस होना चाहिए।

जब आपका समय आएगा, जब आपको मौका मिले तो आपको कर दिखाना है, अपना बेस्ट करके दिखाना है। तो उसके लिए अपने आप को आपको प्रिपेयर करना होगा। तो उसके लिए ट्रेनिंग भी हेल्प करती है, क्योंकि आजकल इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि अगर आप थोड़ा सा नाटक कर ले तभी आपको फिर आप ऑडिशन देने जाएंगे, क्योंकि आजकल ऑडिशन हो गए, ऑडिशन के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है। तो ऑडिशन में आप कैसे आपको पूरे पांच टेस्ट मिलती है, तो अगर आप थोड़ा सा नाटक कर चुके हो या थोड़ा सा कुछ काम कर चुके हो उस चीज में, तो आप उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ वो कर सकते हो। और अगर आपका ऑडिशन अच्छा हुआ फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बम्बई ऐसी जगह है ये मैं मानती हूँ कि टैलेंट की यहाँ पूजा होती है। तो आप ये जरूर है कि जैसे कि अब आलिया भट्ट है वो तो फिल्म खानदान से है, लेकिन बाहर से भी जो लोग आते हैं, शाहरुख खान भी बाहर से आए, अमिताभ बच्चन भी बाहर के हैं, मतलब इंडस्ट्री के लोग भी चलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से बाहर भी जो आते हैं, अक्षय कुमार हैं, आयुष्मान खुराना हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, आप वो भी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आपको मेहनत

0: जरूर है कि जैसे कि अब आलिया भट्ट है वो तो फिल्म खानदान से है, लेकिन बाहर से भी जो लोग आते हैं, शाहरुख खान भी बाहर से आए, अमिताभ बच्चन भी बाहर के हैं, मतलब इंडस्ट्री के लोग भी चलते हैं लेकिन इंडस्ट्री से बाहर भी जो आते हैं, अक्षय कुमार हैं, आयुष्मान खुराना है, बाहर से जो लोग आते हैं आप वो भी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है और जटिल से सबको करना पड़ता है, लेकिन आप जल्दी हार ना मान, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
1: हिमानी जी, आप जिंदगी नामा प्रोग्राम का हिस्सा बनी, अपनी जिंदगी से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प बातें हमारे साथ, हमारे सुनने वालों के साथ आपने शेयर की। जिंदगी नामा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां, जिंदगी नामा।
1: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के अभिनय सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। यादों का कारवां श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कोई यादगार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम के साथ। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न।
3: यादों का कारवां, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 11:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
4: हेलो सिटी ब्यूटीफुल,
5: क्या मैं बोलूं?
6: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
3: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल लेकर आज आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। आपसे लेकर 12 तक आपके साथ रहेंगे और फरमाइश पूरी करेंगे आपके इस प्रोग्राम में उन फिल्मों में से, जो फिल्में, 5 हमने आपको बताई हैं। फिल्में एक बार फिर से नोट कर लीजिए, दिल का क्या कसूर, साथी, ये संजय दत्त वाली। उसके बाद अगली फिल्म है सर, फिर रंग और आखिर में खलनायक। इन 5 में से आप अपनी पसंद की फिल्म चुनिए, हमें बताइए उस फिल्म का गाना, हम आपसे बातों ही बातों में वो गाना प्ले करेंगे। हमारे नंबर्स हैं 2660617 2660619। ये 3 नंबर्स हैं, किसी एक को डायल करना है और अपनी पसंद का गाना बताना है 5 में से। दिल का क्या कसूर, साथी संजय दत्त वाली, सर रंग और खलनायक। तो चलिए, सिलसिला प्रोग्राम का तो हो गया है शुरू, लेकिन अभी हमारे श्रोता जो हैं नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं, हो सकता है ये आपकी ही फरमाइश हो।

0: और दोस्तों अब हमारे श्रोता जो हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं, देर किस बात की है, अब बात करते हैं। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: हेलो
0: जी।
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। वेलकम
1: सर, मैं सूरज बात कर रहा हूँ तहसील टोक जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से।
0: वाह भाई सूरज, क्या हाल है?
1: बढ़िया सर।
0: बहुत गर्मी लुटाई है?
1: गर्मी तो नहीं सर, लेकिन आज थोड़ी सी बादल लगे हमारे यहाँ एरिया में।
0: भाई जहाँ आप रहते हैं वहाँ तो मौसम अच्छा होगा। अपनी जगह का नाम बताइए
1: सर। तहसील ठोक जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: शिमला हिमाचल,
1: तहसील ठोक।
0: ठोक से बोल रहे हैं, शिमला से
1: सर।
0: जी, तो सूरज भाई बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
1: आजकल ना सर वैसे विदेश बहुत, आप जैसे घर में रहते ना तो आजकल टाइम नहीं लगता कॉल करने का।
0: टाइम नहीं लगता, आप बिजी रहते हैं?
1: बिजी रहते सर, यहाँ कभी बगीचे के काम में होते, कभी यहाँ गाय की सेवा में बिजी होते हैं।
0: वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, काम से ही एक काम है और काम से ही सब कुछ है, और बीच में इस काम में आप तो हमें याद कर लेते हैं, यही बहुत है। तो बताइए अपने पसंद का गाना बताइए।
1: गाना सर फिल्म के नाम दोबारा जान सकता हूँ मैं?
0: देखिए, दिल का क्या कसूर है, साथी है, सर है, रंग है, खलनायक है, ये पांच फिल्में हैं। दिल का क्या कसूर का ये गाना कुमार सानू का गाया हुआ हमने प्ले किया है।
1: तो ऐसा करो सर, क्या बोलते हैं वो जो दिल का और सर आज हम पूरे 26 साल के हो गए।
0: अच्छा, आज आपका बर्थडे है?
1: जी सर,
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सर।
0: ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, मुस्कुराते रहिए और सुनिए ये गाना।
1: थैंक यू सर। ओके।

0: साधना सरगम की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, दिल का क्या कसूर। इस फिल्म से हमारे अगले श्रोता ऑनलाइन है। हेलो सिटी ब्यूटीफुल, हेलो जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। यश कुमार वर्मा जी, वेलकम, आप ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
0: अभी आज फिर आपकी आवाज में कुछ?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है बस।
0: अच्छा, तो खैर आप अच्छे रहे, हम यही दुआएं करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: थोड़े चिंतित हो जाते हैं। और आज बताइए कौन सी फिल्म का गाना?
1: फिल्म आप बताइए पहले।
0: देखिए, दिल का क्या कसूर के दो गाने तो हम प्ले कर चुके हैं, अब जो फिल्में बची हैं वो हैं साथी, सर, रंग और खलनायक। अब ये चार फिल्में हैं, इन चार में से किसी एक फिल्म को चुनिए, उसमें से अपनी पसंद का गाना बनाइए।
1: रंग फिल्म का,
0: रंग फिल्म का गाना, कौन सा गाना सुनवाने हैं आपको?
1: रंग का कोई भी सुना दीजिए।
0: शुक्रिया कॉल के लिए आपका, और अपना ख्याल रखिएगा
1: जी। धन्यवाद।

0: अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में अभी आपने रंग फिल्म का ये गीत सुना। अब फिल्में जो बची हैं दोस्तों, वो साथी है, सर है और खलनायक है, ये तीन फिल्में। और नंबर से एक बार फिर से बता दें, 2660615, 2660617 और 2660619, ये तीन फिल्में, ये तीन नंबर्स हैं, तीन फिल्में हैं। और हमारे अगले श्रोता ऑनलाइन है। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। ये
1: फिरोज पंचकुला से बोल रहा हूँ, सेक्टर 11।
0: विनोद जी?
1: विनोद नहीं, मोहम्मद फिरोज।
0: मोहम्मद फिरोज, अब आपने अपना नाम अच्छी तरह से बताया
1: जी।
0: और मोहम्मद फिरोज भाई क्या हाल है, पंचकुला कहाँ से?
1: 11 सेक्टर।
0: 11 से
1: जी।
0: तो इस प्रोग्राम में पहली बार फोन किया कि करते रहते हैं?
1: नहीं सर, मेरा तो लगभग हो ही जाता है, महीने में एक दो मरतबा तो बात हो जाती है मेरी।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि शायद पहली बार मुझसे हो रही।
1: नहीं नहीं नहीं, आज मैं थोड़ा नर्वस हो रहा सर।
0: क्यों?
1: पता नहीं, कुछ अंदर बेचैनी सी हो रही मुझे आज। एक्चुअली मैंने गाना सुना था उसका, जो अभी इससे पहले हुआ ना पिक्चर, कौन सी थी वो, रंग पिक्चर का।
0: रंग पिक्चर का, हाँ।
1: और वो गाना पहले किसी भाई ने सुन लिया।
0: अच्छा, मतलब वो आपकी पसंद तो प्ले हो गई ना देखा जाए तो।
1: मैंने और कोई का सुना था ना उसमें, एक और गाना था, सॉन्ग दूसरा था।
0: अब ऐसा ना कि अगर
1: अच्छा सर, एक फरमाइश हो रहा है मेरी आपसे ना।
0: बताइए बताइए।
1: पुजारी सर, फरमाइश ना पुजारी
0: जी,
1: आप थोड़े से गाने जो साइड सॉन्ग होते वो भी लाया करो।
0: कौन से सैड सॉन्ग?
1: जी
0: भाई, ये देखिए, इस ये जितनी हमने फिल्में आपको बताई हैं इनमें से हर रंग का गाना होगा, इसमें रोमांटिक भी होगा, उदास भी होगा।
1: मोहम्मद रफी, मुकेश, इस तरह के गाने होते हैं ना, वो भी अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, पुराने गाने कहिए ना।
1: जी जी जी जी,
0: तो
1: जी,
0: पुराने गाने किसी न किसी मोड़ पर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
1: बस उस संडे का मैं इंतजार रहेगा।
0: चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।

0: मोहम्मद सियाज भाई, तो फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम में, आपकी पसंद का गाना प्ले करेंगे।
1: जी जी जी।
0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल,
2: द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड।
0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
3: हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सर कोई भी गाना सुना दो। शिवाजी भाई सेक्टर में पंचकूला से बोली सर।
0: जी शिवाजी, क्या हाल है आपके?
3: बस बस सर, सब ठीक है। आपसे बात नहीं हुआ था।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने फोन मिलाया और सलाम किया, हम भी आपको सलाम करते हैं।
3: हाँ सर, तो ऊपर वाले की कृपा रहा है कि जो आपसे बात तो हो गया।
0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
4: हेलो
0: जी।
4: जी नमस्कार
0: जी, वेलकम। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, फरमाइए।
4: जी बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो हेलो सिटी ब्यूटीफुल जो है चालू किया है। और वैसे तो मैं हेलो चंडीगढ़ में कॉल लगाता रहता हूँ, लेकिन जो ये फरमाइशी प्रोग्राम है मेरा पहला कॉल है, पहली बार कॉल लगा इस प्रोग्राम में।
0: जी बताइए, फिर वो जो फिल्में बाकी हैं उनमें से कौन सी फिल्म से गाना आप सुनना चाहेंगे? जैसे साथी है, सर है, खलनायक है।
4: जी तो साथी मूवी का गाना सुनना है, हुई आंख नम ये दिल मुस्कुराया।
0: हुई आंख नम तो ये दिल मुस्कुराया।
4: जी जी जी जी जी,
0: अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना है।
4: जी जी जी,
0: तो ये आप गाना सुनवाने के लिए कह रहे हैं। और बताइए आपके यहाँ पर मौसम कैसा है?
4: मौसम बढ़िया है, बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। और आपका प्रोग्राम में आनंद ले रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं लखनऊ के लिए भी ट्राई कर रहा कि उधर भी कॉल लग जाए। तो फिर आप लखनऊ की, लखनऊ में तो नहीं लगी, फिर आपके प्रोग्राम में कॉल लगी, बहुत अच्छा लग रहा है आकाशवाणी से जुड़ने का। और आकाशवाणी के 90 वर्ष भी मना रहे पूरा देश।
0: जी जी जी जी, तो ये साथ इसी तरह से आपका और हमारा रहना चाहिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में गाना साथी फिल्म से कोटखाई में।
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने साथ ही फिल्म से ये गीत सुना। और अब हमारे पास जो फिल्में बची हैं वो बची हैं दो, खलनायक है और सर। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन सी फरमाइश हमें बताते हैं। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: हेलो,

0: जी नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, वेलकम। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
0: जी मैं नरेंद्र शर्मा
1: जी,
0: सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
1: वेलकम नरेंद्र शर्मा जी, कौन सी फरमाइश है आपकी?
0: अभी खलनायक का जो टाइटल सॉन्ग है वो सुनवा सकते हैं?
1: खलनायक हूँ मैं।
0: हाँ जी
1: जी, ये आपकी फरमाइश पर हम प्ले करते हैं गाना। सुनिए, पंचकुला में सेक्टर 9 में।
0: ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: जी मैं योगेश बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश से।
0: हाँ योगेश, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी बढ़िया हूँ, आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ और बड़ी देर से कॉल लगी है।
0: जी योगेश जी, आपकी कॉल लगी है लेकिन प्रोग्राम का समय क्या करें, लगभग समाप्ति की ओर है।
1: जी और श्रोताओं की भी कॉल लगी है, उनकी फरमाइश मुझे पसंद आ गई है, वही
0: फरमाइश
1: अच्छा, फरमाइश भी होगी।
0: अच्छा आपकी फरमाइश भी साथ हो गई
1: जी।
0: चलिए आज एक फिल्म जो है सर का गाना शामिल नहीं हो पाया इस प्रोग्राम में, लेकिन आप सभी ने इस प्रोग्राम में कॉल की, हमसे बात की, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बोल दिया।
3: क्या मैं बोलूं?
4: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 MHz पर। 12 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है।

0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:05 हुए हैं। अगला प्रोग्राम यादों की महफिल।

आरती से निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

पति कहे पुकार के इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे थे आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद जफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। गंगा की लहरें फिल्म का गीत है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: फिल्म की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज, मम्मी का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद।

फिल्म सुल्तानपुरी के बोल थे लता मंगेशकर की आवाज ममता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रोशन की तरह थी। और इस गीत के पहले श्रोता हमने आपको सुनवाया बाबू फिल्म का गीत किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे राजेश रोशन का संगीत था।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब,

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का एक बज चुका है, अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। यही क्रम रहेगा 6:10 पर हिंदी में, 6:20 पर पंजाबी में। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 2:15 पर, 5:00, 6:00, 8:45 पर समाचार संध्या और 11:00।

स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे सुनिए शाम 5:20 पर। शाम 5:30 बजे आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉन स्टॉप नगमे।

अमृत वाणी कार्यक्रम में आप शब्द श्रवण करेंगे शाम 6:30 पर, शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गाने, रात 10:30 पर सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर, शाम 5:05 पर। विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों में दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, 2 बजे प्रोग्राम त्रिवेणी।

अढ़ाई बजे सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा, 3 बजे मन चाहे गीत कार्यक्रम, आपके मन चाहे फिल्मी गाने इस प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। बाद दोपहर 3:30 बजे नाट्य तरंग प्रोग्राम में आज का नाटक है चंदन वृक्ष। उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम सुनिएगा 4:00 बजे। निर्देशक रमेश तलवार से बातचीत का 5वां भाग आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में। 7:00 बजे विशेष जयमाला में सैनिकों की शौर्य गाथा। आज शौर्य गाथा है महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकी जाकू केंगुरसे की शौर्य गाथा। मैरिज एनिवर्सरी ये झलकी आप सुनेंगे रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में।

0: लेखक हरि नारायण शर्मा। रात 9:30 बजे आज के फनकार प्रोग्राम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित है। 10 बजे छाया गीत, 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। ये थी जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। तो पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा 25-26 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल अब टाल दी गई है। ये फैसला बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघों के बीच मुंबई में हुई सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया। दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर प्रगति होने के बाद हड़ताल स्थगित करने पर सहमति बनी। बैंक कर्मचारी संघों ने पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक और पेंशन संबंधी अपने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पिपली, सोनीपत एवं गुरुग्राम के नए बस अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाया जाएगा। श्री विज कल देर शाम अम्बाला छावनी के निकट लोकल बस सेवा में शामिल हुई 10 नई इलेक्ट्रॉनिक वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले आपार जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के नजदीक बनाया जाएगा, यानी जैसे ही यात्री मेट्रो स्टेशन से बाहर आएगा तो उसे वही नजदीक से इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ कुछ अन्य बस अड्डों के निर्माण का काम चल रहा है, उन्हें भी तेजी से पूरा करवाकर जनता को समर्पित किया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि लगभग 20 साल तक अम्बाला छावनी में लोकल बस सेवा बंद रही। परिवहन विभाग का दायित्व मिलने के बाद उन्होंने 1 नवंबर 2024 से यहां पर दोबारा लोकल बस सेवा शुरू करवाई। श्री विज ने कहा कि 10 नई बसों के साथ अब यहां पर 25 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें हो गई हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित उत्कृष्ट कृति वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका लेखन हरियाणा सरकार में कार्यरत जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ कृष्ण के आर्यन ने किया है। इसके लिए उन्होंने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त किया। डॉ आर्यन ने अपनी पुस्तक कर्मयोगी कृष्ण के विषय में बताया कि ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके महान चरित्र की शुद्ध अभिव्यक्ति है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्डा ने आज जींद में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश जन समस्याओं का निवारण मौके पर ही किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल, डीजल और सोना बचाने के आह्वान पर विपक्ष का राजनीति करना गलत है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय भी देशवासियों से सोना व डीजल पेट्रोल बचाने की अपील की गई थी। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने अन्न संकट के समय देश से एक वक्त का उपवास रखने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री कोई आह्वान करता है तो पूरे देश को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर उन्होंने कहा,
2: एक छोटी सोच का परिचय राहुल गांधी ने देने का काम किया जो अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बताते हैं, लेकिन इतनी छोटी सोच तो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में कमी के लिए प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। 8-10 नेता पूरे वर्ल्ड में जुटे उग्रवादियों के टारगेट पे, तो उनमें सारे देश के प्रधानमंत्री भी, हर जगह आज राहुल गांधी को बात मिली है। कांग्रेस आज हाशिए पर है।
1: शिक्षा को अधिक रोजगार परक व तकनीक

युक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने केंद्र सरकार की संस्था परख की मदद से स्कूलों में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक कोडिंग की शिक्षा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने भिवानी में पत्रकारों को बताया कि इसके लिए प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा से जुड़ी संस्था परख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं यादविंदर सिंह तों प्रदेशक खबरां सुणो। पंजाब चोण कमिशन ने दस्सिया है कि सूबे च आउंदी 26 मई नूं हो रही म्यूंसिपल चोणां लई कुल 7555 उम्मीदवार चोण मैदान च ने। आम आदमी पार्टी दे 1801, कांग्रेस दे 1550, भारतीय जनता पार्टी दे 1316, श्रोमणी अकाली दल दे 1251, बहुजन समाज पार्टी दे 96 अते 1528 आजाद उम्मीदवार ये चोणां लड़नगे। पंजाब के नगर कौंसलों और नगर पंचायतों के चुनावों आजाद निरपक्ष शांतमई ढंग नाल करवाने लई सूबा सरकार वल्लों जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। आबकारी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने दस्सिया है कि पंजाब के मुख्य चोण कमिश्नर की हदायतों से चोणों वाले इलाकों में 26 मई को ड्राई डे ऐलाना गया है। उन्होंने दस्सिया कि ड्राई डे दौरान संबंधित नगर कौंसलों ते नगर पंचायतों के अधिकार खेत्र शराब की विक्री वंड ते वरतों उत्ते पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस दिन सारे ठेके अहाते बार होटलों स्थित बार अते होर शराब पीचन वाले स्थान बंद रहेंगे। कपूरथला जेल की एक बैरक च कैदियों वालों कल कथित तौर पर देर रात किए गए हंगामे कारण जेल के कुछ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। एक घटना कैदियों के विचार अधीन कैदियों दरमियान झड़प तो बाद वापरी। सीनियर पुलिस अधिकारी तुरंत स्थिति को काबू करने लई पुलिस बलों नाल मौके पर पहुंचे। इस दौरान जेल के अंदर आले दुआले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कपूरथला के SSP गौरव तोरा ने इस घटना बारे जानकारी देते हुए दस्सिया।
1: जिला पुलिस को एक इत्तला मिली थी जेल ऑफिशियल से कि जेल के अंदर कुछ कैदी आपस में लड़े हैं। कुछ कैदी है उन्होंने जेल के अपने बैरिक्स के बाहर ओपन में कुछ चीजों को जो आग लगाई हुई थी और कुछ जो कैदी है वो आपस में लड़ रहे थे। तुरंत ही सुरक्षा बल का प्रयोग करते हुए सारे कैदियों को अपनी अपनी पोजिशन पे उनको वापस अपने बैरिक में भेजा गया। कोई जेल ब्रेक नहीं हुई है। इशू एक लोकलाइज्ड इशू था जिसमें ब्लॉक नंबर 4 के कुछ कैदी आपस में लड़े थे। ये सारे हार्डन क्रिमिनल्स है के ऊपर 4 या 4 से ज्यादा मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। तो कुछ समय बाद ये कैदियों आके ये छत पे चढ़ गए थे। पुलिस बल का प्रयोग करके उनको नीचे जाने में हम सफल हुए हैं। किसी को गनशॉट इंजरी नहीं है। टियर गैस की शेल की इंजरी एक कैदी को आई है। इसके अलावा 2 और कैदी हैं जिनको चोटें आई है, जो कि उनकी आपस में ही जो भिड़त हुई थी उसके कारण जो चोटें आई है। प्रिजन के अंदर अलग अलग जो ग्रुपबाजी लगातार ही चलती रहती है, तल्खी आ जाती है, तो उस वजह से बेसिकली आपस में टसल हुआ।
0: काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने सरहद पार नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करदिया 4 मुलजमान गिरफ्तार किया है। गुरु हर साहिब ते फिरोजपुर चो 18 किलो तो वध हैरोइन समेत 9 लाख तो वध दी रकम बरामद की है। जांच मुताबिक इस गिरोह के संबंध विदेशों च बैठे तस्करा ते हैंडलर नाल सन, जिन्होंने मुलजमान नूं नशीले पदार्थों की खेप भेज के अगे वंडण का काम सौंपिया सी। इस मामले च अगलेरी जांच जारी है। देश व्यापी फिट इंडिया मुहिम के हिस्से वजों सरहदी सुरक्षा बल के जलंधर स्थित पंजाब फ्रंटियर हैडक्वार्टर में फिट इंडिया साइड ऑन साइकिल मुहिम के 75वें एडिशन के हिस्से वजों साइकिल रैली करवाई। यह रैली पंजाब फ्रंटियर हैडक्वार्टर BSF के अश्विनी स्टेडियम तो शुरू हुई। इस 250 तो वध BSF अधिकारियों ते जवानों ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली में BSF पंजाब फ्रंटियर के इंस्पैक्टर जनरल डॉक्टर अतुल फुलजले ने झंडी देकर रवाना किया। इस मौके उन्होंने साइकिलों को शरीरक ते मानसिक सेहत बनाई रखने लई असरदार अते बेहतरीन साधन दस्या। रांची फेडरेशन कप एथलैटिक्स चैंपियनशिप च गुरिंदर वीर सिंह ने मर्दों के 100 मीटर मुकाबले च सोने का तमगा जितया है। उन्होंने प्राप्ति उत्ते 10:10.9 सेकेंडा ने नवे राष्ट्रीय रिकॉर्ड नाल हासिल की है। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड 10:17 सेकेंडा का सी।

0: या पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 1:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, मिलकर आनंद लिया जाए कुछ फिल्मी गानों का। सबसे पहले मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर।

मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना। ये फिल्म थी अप्रैल फूल। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। अगला गाना है कैफी आजमी का लिखा हुआ, एसडी बर्मन के संगीत में। ये फिल्म है

अभी आपने गीता दत्त को सुना, यह फिल्म थी कागज के फूल। एसडी बर्मन के संगीत में गीत को लिखा कैफी आजमी ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। और अब ओपन एयर के संगीत में मजरूह के बोल सुनिएगा, शमशाद बेगम, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजों में। यह फिल्म है सीआईडी।

मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में अभी आपने सीआईडी फिल्म से ये गीत सुना। यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई। अगला प्रोग्राम है सुरीला सफर।
2: एक और श्रोता लिखती है कि दो दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है। हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहल उठता है। मौसम है आशिकाना। वही हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था। उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी। बहुत मजा आया था जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी। वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपने में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। और वैसे आप कोशिश करिए, कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर।

शशांक की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल अध्यारी की रचना थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम्हें है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे है। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगमा सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती है, ये मौसम रंगीन समा और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं, श्रोताओं आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

उधर एम एन जी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी जरूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और रोज मन भावों को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रही है पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता मैं लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख चीनी की तमन्ना उठती है, राज़ी दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी

श्रोताओ, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं, क्या किसी खास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊंट की सवारी तो प्राय सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, बच्चे भी तो ऊंट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही हैं प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें, क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊंट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच ऊंट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊंट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जब ऊंट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है, जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है, जब चांदनी रात हो।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती है कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर भी हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन।

रोज सजना सुन कभी राजेश खन्ना और आशा पारिक पर फरमाया गया आपके सभी कमेंट्स सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है, वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है, तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे, तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे, तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है

डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो

रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।

0: अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: इस 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करसियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुनिए सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढला रहा हुलदी बर्मन ने, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

फिल्म सुल्तानपुरी के बोलों को सुरभि धारा चित्रगुप्त ने, लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो मना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना

0: वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: टेन गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं सुनकर गीत था मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी की बोलियों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल

0: यू ही क्षमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में।
1: का दुगाना था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, बहसुल सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्म गीतों का कार्यक्रम मंचा है गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मंचा है गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मंचा है गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मंचा है गीत शामिल हो रहे हैं। मंचा है गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

मिलो सजना इस गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नीन कुमार अडवंत, उर्मिला अडवंत, नीलेश अडवंत, मयूरी अडवंत, कल्पेश अडवंत और संगीता अडवंत।

बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी, एस एच बिहारी की बोलों को सुर में ढाला ओपिनियन ने, इस गीत को सुनना चाह दारायणजी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाह सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से, ये है चंदू हाथोले, सीमा हाथोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, खुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्री, आप सभी की फरमाइश थी।

फर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुरई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर सुन के दो गाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से और भरत यादव काजल शर्मा विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता है तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आर्या, भारती पारस पायल, श्वेता और उमेन आर्या।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, जो लता मंगेशकर का गाया, अरुण बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी, और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचेतन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, और इस गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सीजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मंचाई गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

Hello. Hello.

0: कहते हैं खिड़की के पास, वहाँ क्यों? अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए, तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी।
1: अरे जी
2: हाँ बिटिया,
1: हमारी यही डिनर
2: है।
0: चल बैठ सुनो। अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
1: तो ले चाय पी, एकदम गर्म है।
3: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
0: कहाँ? जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
1: वो दिख तू
0: कहाँ?
1: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह कितने खूबसूरत बाल है,
0: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह। सुमन सुमन बुधे सुमन देखो कहाँ, कितनी अच्छी लग रही है सच में।
1: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
0: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी तैरती हुई चली जा रही है।
1: मैं तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से, न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
0: है। क्यों नहीं तो हो, थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता हूँ। गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका, जैसे
1: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा का। हाँ तो फ्रेंड्स, मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। वैसे ये भी चंदन जैसी है पर जरा सुदाप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
0: माँ तू नहीं सुनेगी।
1: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
0: अरे यार समोसा खाने
1: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
0: ओ रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। कभी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
1: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सभी?
0: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
1: ओके बाय बाय फ्रेंड्स।

0: नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? वो डू यू मीन सुनी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चे जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगाम नहीं कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अतखिली अनछुई उर्स में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी।

0: वो भैया जी आए हैं।
1: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
2: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
1: तार वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
2: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
1: रिजर्वेशन?
2: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
1: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टी में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
2: मैं तुम्हारे वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
1: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
2: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
1: ब्याह?
2: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
1: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
2: ये मजाक नहीं सुनी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
1: भैया मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
2: देख सुनी, परेशान मत हो, तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
1: ओ भैया
2: सब ठीक ही है। और देख रही तुझसे पूछने के बाद, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बड़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
1: हाँ तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
2: सुनी बस प्लीज, दुख तेरे मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी
1: है।
2: अच्छा सुन मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
1: सामान बांध लो, सब लाट साहब है, उसे बिना पूछे सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है। अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दू रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
0: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: मैं भी तेरा दूल्हा देखा। मुझे छोड़कर मत जा, मुझे बहुत खतरा छोड़ी।
1: अरे सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
0: छोड़ मुझे रूना, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे मिट्टी में साफ दिखाई दे रहा है। मेरा क्या होगा रूना?
1: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तो एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
0: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? सोनी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ
0: अंकल,
1: सोनी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया

वही मोती? सुनो खुश रहे, बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुनो की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो।

0: घुंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भैया तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी? अब उधर आइए भैया,
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ, भाभी ताईजी और बुआ जी के पास।
0: मुबारक हो लल्ला जी। आइए भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा।
3: किस्मत वाले हैं हमारे
0: भी। चाय पी लीजिए, आप
1: क्या कहा? मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पियो, तुम भी पियो, तुम भी पियो।
0: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई है, हे भगवान, अब बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा लगवारी की चांद की बहू आते ही ग्रहण लग गया, अरे क्या होगा?
4: अरे बंदी भी तो पागल के सर।
1: क्या कहा? अरे मैं पागल हूँ?
4: अच्छा
1: पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। ये मुझे क्या पहना दिया है? हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का क्या हुआ है? झूमो नाचो गाओ।
0: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ करिए नहीं, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
5: हूँ, क्या
1: मुझे पागल नहीं।
0: बाबूजी
5: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, आंखें बोल रही हैं।
5: क्या कह रही?
0: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुन पकड़े हुए हैं।
5: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा
5: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी,
5: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी, भाभी।

0: टाइगर संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी। ये लीजिए पानी पी लीजिए।
1: नई जिंदगी की शुरुआत वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी आपको मेरी कसम।
0: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं है।
1: तो फिर
0: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई है। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
1: ट्रेजेडी?
0: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
1: वहां ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
1: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी अभी भूख नहीं।
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबू जी आ गए हैं।
1: सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे डैडी, इससे अच्छा होगा अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की जरूरत थी डैडी। रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंबला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूं। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: है?
2: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी?
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: अब क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा,

0: डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
1: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
0: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सोने की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
0: मंजू मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
0: चुप हो जाओ चुप हो जाओ, जो मुंह में आता है पढ़ देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
0: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए, जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
0: ठीक।
2: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं, रितेश कहाँ है?
3: मम्मी प्लीज, ये सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
2: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तू? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
3: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
4: क्या बोल बेटा?
2: छोड़ बेटा, क्या हो गया? मेरी सुनी बेटी।
3: आई डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
2: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
5: इत्मीनान रखिए इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है, ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
2: ठीक है ठीक है,
5: और घबराने की कोई बात नहीं है।
2: ठीक है जा बेटा, दवाएं ले आ।
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
2: ठीक है,
3: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
2: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
3: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
2: धोखा? कैसा धोखा?
3: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागल खून के दौरे पड़ते हैं, कई महीने तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
2: अच्छा,
3: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
2: नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भगवान इसको क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
3: देखो मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा, मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
2: क्या?
3: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मम्मा, तो जान पर भी हमला करता है, अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, यूं मैं उसकी केयर करेगी, और भाई ससुराल वालों की बात तुमसे हम निपट लेंगे।
2: अच्छा
3: अब ठीक है मम्मा, आप सुमी के पास जाइए।
2: ठीक है।
1: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का।

0: अंदर छत बताती है भोली भाली सुई। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भागिनी दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी और मैंने अपने पति को क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर वो क्यों तप रहे हैं टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
1: अंदर आ सकता हूं?
2: ओ, आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी, बच्चे तो ठीक है ना?
1: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
2: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
1: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूं।
2: कैसे तोड़ दो? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
1: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
2: राजन,
1: सुमी
2: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत थक गई हूं
1: सुमी।
2: और अब जीत
1: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन रस से सांप हट गए हैं
2: और बिखर गई है।

अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: 1985 जमाना।
1: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
2: क्या
0: 1993

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। मैं कोलीवाड़ा में जाम थे
0: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
0: साइन में
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
0: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
0: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी।
0: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
0: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
0: जब चलता कुछ हो नहीं रहा
1: ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सोतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और सेलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
0: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन के हिसाब से कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी समाज चलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बीआर के पास, उन्होंने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनोज यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, इसको असिस्टेंट रखो जैसे अपनी पिक्चर में। भाई साहब

0: मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट है, अगली बार बुलाइए जब अगली पीछे शुरू करेंगे तो फिर तो बोले का पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
1: यस,
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके कोलीवाला से आकाश कुरला एक आने का टिकट वहां जाता, पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठंडी में काम बन जाता था, काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ वहां पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर ले, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस उस जगह पे, यश चोपड़ा ने नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतम ने बोले यहाँ ये नोट कर लिया, इसको डबल से पांच बार से नोट कर, कोई नहीं बैठा साहब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सुनील कप दोनों बैठे थे, तो मैं गया बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों निकलूंगा, देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है आप खुल लीजिए,
1: हाँ
0: फिर मिलिए और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर उसमें होगा, वो ऋषि कपूर के साथ उन्होंने बहुत फिल्में कर रहा,
1: हाँ बिल्कुल
0: ऋषि कपूर उसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी,
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है, ये उनके जहन में था और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त थे। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था, ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, यार वही समझ लें वही पुलिस और सिपाही और देखिए मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना,
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में, वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त का अरेस्ट हो गया,
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले रोतर को अवार्ड मिलेगा ये रोल कर, और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के,
1: हाँ हाँ,
0: तो उसके बाद संजय दत्त के मेरी बहुत दोस्ती होगी। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म जो एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना,
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं, नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते सब है, गाने देता है सब कुछ है, लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सब चाटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे विश्व गुरु का एक

0: उसने आइडिया सुनाया, आइडिया सुनाया उसने, ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन उसमें चेंजेस ले लीजिए, नया न्यू कमर था राइटर।
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहे करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लिया तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलेक्ट्रिकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो भी दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की हो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव करेक्टर मिल गया।

0: चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक, खूबसूरत खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रहे हैं वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछू तो मेरे पास कोई आया जो भी कैसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, अपनी स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता था एक्टर।
1: जी जी,
2: मुझे ये जो इधर सेंटर दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, मेरे और ही होगा ये नहीं होगा, ये नाटक में नहीं होता।
1: जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में आप अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब मैं काम करता हूँ और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती है, फला होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। बोला हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके पाँच छः शो ही हुए अमेरिका में, यहाँ आके चार पाँच, फिर पाँच छः शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 शो किए।

0: शबन आजमी वाला प्ले।
1: इसके बाद हमने पहले वेम के बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? जिया जी के पास पूछते अगर वो करने के लिए हाँ कर दे। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने RBO एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। मैंने सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया। और उन्होंने मुझे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी आदेश में जिसको आप बुलाना चाहते हैं, मैं भी अपने लोगों को बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। जिसने भी हमने शो रखा भाईदास में प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने, हमारे भी दोस्त फैमिली आई, सबने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि उनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए, रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह,
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, ये आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, आप करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मुझे दर्शने करनी शुरू हो गया और फिर हमें अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया,
2: वाह वाह वाह,
1: उन्होंने कहा रोल मेन जय जी का लेकिन आपका रोल बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जज थ्रो प्ले में और मेरा कभी कभी बीतना आता समय तीन चार, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

तुम्हें अपने ही प्यार को समझाओ, वो नहीं आएगा मान नहीं पाओ। शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो वाचमैन का रोल लगे। अगेन मेरा रोल बीच में है लेकिन प्लास्टर वास्टर आते हैं मेरे आने पर, अल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लास्टर मिलते हैं वो रोल भी वो प्ले। फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए, अमेरिका से फिर गल्फ कंट्री भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्री भी गए, इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को उस तरह मिल जाते हैं। इस वजह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रुजी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे।

और ये सब। तो उन्होंने कहा यार मैं जरा प्ले जगह बहुत अच्छा था, मैंने कहा आप करेंगे प्ले करूंगा रोल करूंगा तब करने का हुआ खोल दिया स्क्रिप्ट सुनाओ और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और प्ले अच्छा आज तक चल रहा है वो भी और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है मैं उसे रोल नहीं करता हूँ वो प्ले भी हिट हुआ आज तक चल रहा है। उसके बाद जीने जो किसी शो पे आई थी

जी का वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उनका हाँ मैं कर लेती हूँ, उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल कर दोनों प्लेट में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोट्री के ऊपर उनकी कहानी लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे, बोले तुम पूछो भाई मैं नहीं बोलूंगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पेट लगूंगा मैं, तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर तो उनके राइटर थे उसने के वो चाहते थे कि वो रोल करे खुद, तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूंगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा अब आपके साथ ये करेंगे, तो या फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता समथिंग राइटर ने। शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही है, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, उन्होंने शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो, उन्होंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर मिल जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा। उनको तो बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब तो कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूंगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए, तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और आप कवल जीत सिंह करते हैं रोल, सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई

0: रवि जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिएगा, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, वो ओटीटी पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शूट करते रहते हैं। तो इक्का में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत जोर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है शाम का, उसमें कैरेक्टर नाम शाम है, तो मैं मुंह चुभाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना

0: पा रहा हिंदी में या कहीं और दूसरी अगर कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती तो उन्हें बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन शेट्टी उस वक्त के हीरो थे वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सिद्धदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो था मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में। ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो मिलिंद प्रसाद ने तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लगे सब लोग हिंदी में, सेम लाइन है पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की, सिंपल वैसे ही बोल करके क्लिप हिंदी नहीं होगी सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है। और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब पे लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी है उसकी।
1: जी जी जी, काबली वाला भी चल रहा है।
0: काबली वाला अवैध है, काबली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी धनराज की बेटी वो आई परीक्षित थाने के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज को नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक फिल्म बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थाने से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, तो वो बलराज सहनी ने रोल किया था, नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने अलग था अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने दिखाई क्यूट प्ले है,
0: हाँ बहुत अच्छा, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेकर बनाई है और उसका हमने एक वर्षन स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना, वो चलता है लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है अपने। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हिना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेकर लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा पता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एकाध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एकाध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ करो उसके तो पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है, ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो ही ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: धारा में आज।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप

0: कि इमीडिएटली अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लो जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो. सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए. उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ऑलरेडी टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है.
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो गए वही चूलियां किसी ने.
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। ने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक

0: व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत की शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 104,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं अब पेश है फिल्म संगीत और पहला गीत आइए सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में दीवाना फिल्म से। गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। बोल समीर की ओर संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत अरबिक गीत बर्दाश्त फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में बोल समीर के और धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र फिल्म 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इस कदर व्यस्त हो कि अपनी सेहत के लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। फलस्वरूप आप आसानी से कोई गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। इन सभी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है योग और मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। इसे करने के कई तरीके हैं, जिसके लिए न तो आपको अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव करना होगा और ना ही कोई खास तैयारी करनी होगी। लम्हे के इस प्रोग्राम में हम आपको मेडिटेशन क्या है, इसके कुछ आसान प्रकार, उपयोग और फायदों के बारे में बताएंगे। साथ ही प्रोग्राम के माध्यम से आपको इसे करने के सही नियम और समय से संबंधित जानकारी भी देंगे। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। मेडिटेशन के प्रकार और फायदों के बारे में जानने से पहले जरूरी होगा कि मेडिटेशन करने के तरीके के बारे में अच्छे से जान ले। दोस्तों, ध्यान लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है, लेकिन कई लोगों में मेडिटेशन को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर मेडिटेशन कैसे करें।

बता दें, मेडिटेशन करने के तरीके में कुछ खास नियम शामिल हैं। इन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें अपनाकर आप मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैठने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाए। अगर बड़े लोग नीचे नहीं बैठ सकते, एक कुर्सी में आराम से बैठ सकते हैं। बैठने की स्थिति में ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी रहे ताकि आप सही से सांस ले सके। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को आराम की अवस्था में ले जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें ताकि सभी मांसपेशियों को आराम मिल सके। इस प्रक्रिया को पैरों से शुरू करके अपने चेहरे तक लाए। सुनिश्चित करें कि पूरा शरीर आराम की अवस्था में है। आराम की अवस्था को हासिल करने के बाद अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से सांस लेने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस ले और उसी प्रकार बाहर निकालें। ध्यान के लाभ को हासिल करने के लिए इस क्रिया को पूरे मन से कई बार दोहराएं। तीसरे चरण में अब अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें। इसके लिए आप अपनी आत्मा या अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप 1 से 5 तक गिनती करें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। वही आप किसी ऐसी चीज या विचार पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं जो आपको सुख का अनुभव देता है। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो संभव है कि आपका मन बार बार अन्य विचारों की ओर जाएगा। इस कारण जरूरी होगा कि मन में संतुलित की अवस्था को बनाने की कोशिश करें कि मन को भटकने से बचाए। अगर मन किसी कारण भटक जाए तो उसे दोबारा केंद्रित करने का प्रयास करें। नींद आना, खुजली का होना, भावनाओं का अनुभव, डे ड्रीमिंग यानी जागते हुए सपने देखना, कई प्रकार के विचारों का लगातार आना और कई प्रकार की अनुभूति होती है जो मेडिटेशन को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए जरूरी होगा कि आप अपने मन को समझिए कि ये केवल आपको विचलित करने वाला कारक है जो आपके मेडिटेशन के रास्ते में पत्थर बन सकते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें और मन को एकाग्र करें। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद ध्यान की चरम सीमा को हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने हथेलियों को रगड़कर आंखों पर लगाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर ध्यान की अवस्था से बाहर आए और अपनी हथेलियों को देखें। मेडिटेशन कैसे करें इस बारे में जानने के बाद लंबे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम मेडिटेशन के प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। इनमें से कुछ खास के बारे में हम आपको बताने की प्रयास करेंगे इस लंबे प्रोग्राम में। आध्यात्मिक मेडिटेशन। आध्यात्मिक ध्यान आपको मोह माया से अलग दुनिया को दिखाने में मदद करती है। इसके निरंतर उपयोग से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। इससे विचारों और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नई मानसिक ऊर्जा का आप में संचार होता है। दूसरा है दोस्तों, विपश्यना मेडिटेशन। ध्यान का ये तरीका सबसे प्राचीन माना गया है। बताया जाता है कि ध्यान के इस तरीके को करीब 2500 साल पहले प्रचारित और प्रसारित किया है। मेडिटेशन का ये प्रकार आज व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसके सहायता से मनुष्य अपने मन के भीतर झांककर खुद को समझने की कोशिश करता है। इसके सहायता से मनुष्य अपने विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ सही और गलत में फर्क करने की क्षमता को विस्तार देने में समर्थ होता है। ज़ेन मेडिटेशन एक और तरीका है दोस्तों। मेडिटेशन का यह प्रकार चीनी बौद्ध धर्म द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। बता दें कि ध्यान का यह तरीका माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें दिमाग को एकाग्र करने पर खास ध्यान दिया जाता है। ध्यान की इस मुद्रा में आपको सुखासन मुद्रा में बैठकर और हाथों को आपस में मिलाते हुए बैठना होता है। ध्यान की इस स्थिति में आपको मुख्य रूप से अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। ध्यान का यह प्रकार आपको दिमागी रूप से विकसित और समृद्ध बनाने में सहायक माना जाता है। ये ध्यान आध्यात्मिक ध्यान का ही एक प्रकार है। इसमें आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र बिंदु मानकर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया आपको चेतन मन के परे ले जाकर अपने अचेतन मन में झांकने के लिए प्रेरित करती है। इससे दुनिया को समझना और उसे अनुभव करने के नजरिए में बदलाव

0: महसूस होता है। आगे बढ़ते हुए अब सुनिए दोस्तों राजयोग मेडिटेशन के बारे में। राजयोग मेडिटेशन बहुत प्राचीन है। ध्यान का ये प्रकार आपको शांत रहने और खुद का निरीक्षण करने में मदद करता है। इससे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता का भाव पनपता है। इस योग के खत्म बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के मंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। योग की इस प्रक्रिया में आप अपनी आंखें खुली रखकर ध्यान लगा सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। मेडिटेशन के इस प्रकार में मनुष्य अपने भीतर यानी अचेतन मन में झांकने का प्रयास करता है। यह आपको भौतिक बाधाओं जैसे दुख, सुख, खुशी और गम से दूर ले जाकर अपने अस्तित्व का एहसास कराता है, जो आपको ये समझाने में मदद करता है कि भौतिक चीजों का दुनिया में कोई भी मोल नहीं है। तो दोस्तों कई प्रकार के योग और मेडिटेशन है, इसके बारे में तो हमने बात की। अब इसके बेनिफिट्स भी बहुत है दोस्तों। तनाव में कमी। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है और दिमागी शांति का अनुभव होता है। मेडिटेशन के उपयोग से चिंता और अवसाद से भी छुटकारा पाने से सफलता हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन से दिमागी विकास होता है, दर्द से छुटकारा मिलता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रोज मेडिटेशन कीजिए। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम नॉन स्टॉप नगमी और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त रमन। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस गीत के साथ।

श्रोताओं, आज प्रोग्राम नॉनस्टॉप नगमे में बस इतना ही। तो चलते चलते आपको बताते हैं उन फिल्मों के नाम जिनके गीत आज हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किए। वो फिल्में थी चलते चलते, हीरोज, हमको दीवाना कर गए, दाग दी फायर, साजन और मुस्कान। तो अब अपने रेडियो दोस्त रमन को दीजिए इजाजत प्रोग्राम नॉनस्टॉप नगमे को यहीं खत्म करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख

0: को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।

0: कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी के चंडीगढ़ के अंदर तुसी सुनोगे एक फिल्मी गीत, ते एक गीत मेला फिल्म तो अलका याग्निक ते साथियों दी आवाज़ में।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੀਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के टाउन पार्क में विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को स्वस्थ और नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में होगा। सभी 23 जिलों में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। और फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा और स्मैक की तस्करी में लिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में 4 दीवारी के निर्माण, सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, कंक्रीट पैदल पथ, ओपन एयर थिएटर, मुख्य प्रवेश द्वार के नवीनीकरण तथा 3 नए फाउंटेन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, गणमान्य व्यक्ति और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री विपुल गोयल ने कहा,
2: टाउन पार्क के अंदर जो आज ये काम है, देखो 6 महीने का हमने ड्यूरेशन रखा, 3-4 महीने के अंदर हम इसे पूरा करने का काम करेंगे। और सिर्फ 9 करोड़ रुपए नहीं, कुछ काम इसमें रह गए थे जो टेंडर के अंदर नहीं आए, लगभग

0: 6-7 करोड़ रुपए और इसके अंदर ऐड होंगे, 15-16 करोड़ रुपए लग के इस पार्क को और बेटर किया जाएगा। इसके अलावा 28 तारीख को नए वाटर कूलर की डिलीवरी हो जाएगी, 29 तारीख को तो वाटर कूलर और जगह जगह पर लग जाएंगे, जिससे हमारे लोगों को पानी पीने की कोई दिक्कत ना हो। और ये भी बताना चाहता हूँ, वाटर कूलर के साथ आरओ वाटर सिस्टम भी है, और जो पहले आरओ वाटर लग रहा है उसको भी हमने बेटर करने का काम किया है।
1: उन्होंने कहा कि सेक्टर 12 के खेल परिसर और स्टेडियम के विकास पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इसके तहत स्टेडियम को नया स्वरूप देने के साथ साथ उसमें कई आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित मैराथन को झंडी दिखाई। मैराथन दौड़ में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं सहित हजारों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला प्रशासन एवं बी सत्य फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित ये मैराथन सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक भवन से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर आकर समाप्त हुई। इंदौर स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री ने युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए सुबह की दौड़ के लिए प्रेरित किया। श्री गौतम ने युवाओं से नशों से दूर रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
2: हमारी पहने हमारे युवा रोल बहुत उत्साह के साथ है, अपन नहीं करे गए एक गंदा रोल सुबह धुमेगी तो शरीर को ठीक बनाएगी। मैं तमाता हूँ कि जब स्वस्थ शरीर रहता है तो स्वस्थ सवाल रहता है। तेज पैरते लेकर जाइएगा किराने वाले समय प्रतिगत है, नंदे से दूर रहेंगे।
1: उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मेहनत, लगन तथा क्षमता के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। श्री गौतम ने लड़कियों द्वारा दी गई प्रस्तुति को भी सराहा।
2: हमारी बहनों ने बहुत अच्छी सांस्कृतिक कर्तव्य हम सबको वो क्या, हमारी बहनों ने माँ दुर्गा और माँ काली का अपहरण दिखाकर ये बताया कि हमारी बेटियां हमारी बहनें एक प्रकार के संस्कार लगा रही है।
1: इस अवसर पर मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों सहित कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा परिणामों में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आज कुरुक्षेत्र में शहीद स्मारक पर ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों एवं वीर जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली के दौरान आमजन को ऊर्जा बचाने के लिए प्रेरित किया गया और स्वच्छ एवं हरित भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉ. जयदीप आर्य ने कहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा। उन्होंने कहा कि सभी 23 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस बार सभी जिलों के उपायुक्त योग दिवस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे। इस कार्यक्रम को हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग हरियाणा द्वारा अन्य विभागों के तालमेल से मनाया जा रहा है। डॉ. जयदीप आर्य ने कहा कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हरित योग के तौर पर मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 10,000 औषधीय पौधे आयुष व वन विभाग के सहयोग से लगाए जाने का प्रावधान है। इसके तहत नीम, पीपल, जामुन, अर्जुन, बड़ का पेड़ और फिर हर्ब्स जैसे तुलसी, गिलोय, हारश्रृंगार, एलोवेरा लगाए जाएंगे। ये पौधे प्रत्येक योगशाला में सभी निजी व सरकारी विद्यालयों के प्रांगण में लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी प्राचार्यों से अपील की कि यदि कोई विद्यालयों में पौधे लगाना चाहता है तो वो उस जिले के जिला आयुष अधिकारी व जिला वन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की कड़ी में आज भिवानी के बाल सेवा आश्रम प्राथमिक विद्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन

0: किया गया। ये कार्यक्रम जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन, आपकी योगशाला, सर्व मंगल संस्था एवं गोरक्षा दल भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह, ऊर्जा और अद्भुत अनुशासन का परिचय देते हुए विभिन्न योगासनों, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का अभ्यास भी किया। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा और स्मैक की तस्करी में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 30 किलोग्राम से अधिक गांजा और 8 ग्राम 56 मिलीग्राम स्मैक बरामद किया है। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध वरुण कुमार दहिया ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने साहिल और अनीश को एमबीएन पाली रोड से एक कार सहित गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद हुआ।
1: ऑफेंडर जो कि साहिल नाम से एक लड़का है, 24 वर्ष उसकी उम्र है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, काफी इस तरीके एनडीपीएस रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है और उससे 21 किलो 55 ग्राम लगभग जो गांजा है उसी गाड़ी से बरामद करा गया है। 23 तारीख की ये घटनाक्रम है जब हमारे ऊंचा गांव इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुंदर के पास सूचना प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने टिप ऑफ किया और नाकाबंदी करी और फिर जब मौके पर इंटरसेप्ट करा गया एक व्हीकल को, जब उसकी छानबीन करी गई और जानकारी ली गई तो राजपत्रित अधिकारियों को बुलाया गया और तलाशी के दौरान उसके पास कमर्शियल क्वांटिटी का एनडीपीएस सब्सटेंस मिला।
0: इसके अलावा ग्रेटर नोएडा निवासी अमित को फतेहपुर तगा गांव से 8 किलो 200 ग्राम गांजा सहित और संतोष को 352 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि हसीन उल्ला को 480 ग्राम गांजा सहित दबोचा गया। वहीं वसीम को 8 ग्राम 56 मिलीग्राम स्मैक के साथ नेहरू कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के टाउन पार्क में विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को स्वस्थ और नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: www.radiomirchi.in.
1: घर घर सूर्य घर
2: यार सच दसा हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7-7 हज़ार रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया है। वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, ओह आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया उन्हां सब दा बिजली दा बिल जीरो आ रहा, इस बार मैं लगा ही दिना। जो बिजली मुफ्त मिलती है तो लैके उन्हें रहे वीर, तुसी भी लगा ही दियो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: घर घर सूर्य घर।
4: हो गया इंतजाम। किसना गुड्डी दी फीस दा दिखा। 20,000 दा लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन सिर्फ नियंत्रित संस्थावां तो ही लो। लोन दा विचार लोड अनुसार, वो भी चेक करके। हो गया इंतजाम। तनखा एडवांस च भेजी।
5: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 87 खिलाड़ियों महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार नाल सम्मानित।

मीटर स्नार शाम 7:30 बजे होगा। तीन खबरें विस्तार में। पंजाब नूं खेडां दे खेतर विच देश दा नूरी सूबा बनाउण दे मकसद नाल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अज सूबे दा नाम दुनिया

0: जेल के अंदर कुछ कैदी आपस में लड़े हैं, कुछ कैदी है उन्होंने जेल के अपने बैरिक्स के बाहर ओपन में कुछ चीजों को जो आग लगाई हुई थी, और कुछ जो कैदी है वो आपस में लड़ रहे थे। तुरंत ही सुरक्षा बल का प्रयोग करते हुए सारे कैदियों को अपनी अपनी पोजीशन पे उनको वापस अपने बैरिक में भेजा गया। कोई जेल ब्रेक नहीं हुई है। इशू एक लोकलाइज्ड इशू था जिसमें ब्लॉक नंबर 4 के कुछ कैदी आपस में लड़े थे। ये सारे हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर 4 या 4 से ज्यादा मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। तो कुछ समय बाद ये कैदियों लाके ये छत पे चढ़ गए थे। पुलिस बल का प्रयोग करके उनको भी नीचे जाने में हम सफल हुए हैं। किसी को गनशॉट इंजरी नहीं है। टियर गैस की शेल की इंजरी एक कैदी को आई है। इसके अलावा 2 और कैदी हैं जिनको चोटें आई है, जो कि उनकी आपस में ही जो भिड़त हुई थी उसके कारण जो चोटें आई है। अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हमने मोबाइल फोन रिकवर किए हैं। प्रिजन के अंदर अलग अलग जो ग्रुपबाजी लगातार ही चलती रहती है, तो हल्के हल्के बैरिक्स की भी चलाई।
1: देशव्यापी फिट इंडिया मुहिम के हिस्से वजों सीमा सुरक्षा बल के जलंधर स्थित पंजाब फ्रंटियर हैडक्वार्टर ने आज फिट इंडिया साइड ऑन साइकिल मुहिम के 75वें एडिशन के हिस्से वजों एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के इंस्पैक्टर जनरल डॉ अतुल फुलचेली ने झंडी दिखा के रवाना किया। फिरोजपुर काउंटर इंटेलीजेंस ने 4 मुलजमान 28 किलो तो वध हैरोइन 9.5 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार करके सरहद पर नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने दसिया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति फिरोजपुर के रहने वाले ने। मुढ़ली जांच तो पता लगे कि इस मॉड्यूल ने विदेशी तस्करों के हैंडलों नाल संबंध सन। अमृतसर स्थित इतिहासक गुरुद्वारा शहीदगंज साहब विखे अज चल रहे उसारी कार्यों दौरान वापरे एक हादसे च 2 औरतों की मौत हो गई जबकि 9 औरतों गंभीर जख्मी हुई ने। साडे पत्रकार ने दसिया कि गुरुद्वारा साहब अंदर चल रहे उसारी कार्यों दौरान अचानक लेंटर वाली लोहे दी प्लेटा हेठा बैठी संगत से जा डिगिया। जख्मियों ने तुरंत इलाज लिए श्री गुरु रामदास वल्ला हस्पताल विखे दाखिल करवाया गया। आईपीएल क्रिकेट विच आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल शामी 7:30 बजे शुरू होगा। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 87 खिलाड़ियों नूं महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार नाल सम्मानित किया। पंजाब सरकार वल्लों साल 2025-26 च पानी बचाउण वाली तकनीक अपनाउण वाले किसानां नूं 35 करोड़ 38 लाख रुपए जारी। फिरोजपुर काउंटर इंटेलीजेंस ने सरहद पर नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करदे 4 मुलजमान 28 किलो तो वध हैरोइन 9.5 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत काबू किया। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म हुई। नमस्कार।

आकाशवाणी दे चंडीगढ़ के अंदर तो अमृत पानी प्रोग्राम दे अंतर्गत तुसी सर्वन कर रहे हो कुछ शब्द ते हुण इक शब्द भाई रविंदर सिंह ते साथियों दी आवाज़ां विच।

विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। श्रोताओं नमस्कार। हफ्ते दर हफ्ते आप और हम न जाने कितनी शौर्य गाथाओं को सुनते हुए आश्चर्य, देशभक्ति, जोश और जज्बे की भावनाओं में गोते लगाते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी देशभक्ति कभी गीतों में, कभी किसी कविता की पंक्तियों में, कभी तिरंगा फहरते देख हमारे दिल में जागती है। लेकिन बात हो हमारे सैनिकों की तो शायद ही कोई ऐसा पल बीतता हो जब उन्हें देशभक्ति की भावना में हम लीन नहीं पाएंगे। हमारे जांबाज सिपाही मातृभूमि की रक्षा के लिए पर्वतों की ऊंचाई को लांघते हैं, सागर की गहराई को झांकते हैं, आसमान की ऊंचाई को नापते हैं। देशभक्ति से भरा उनका दिल फिर भी खुद की देशभक्ति को कम आंकते हैं। इसी जज्बे और जुनून से भरी एक शौर्य गाथा के साथ आज हम आए हैं। इस शौर्य गाथा के नायक हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नेकेजाकू केंगुरसे से।

15 जुलाई 1974 को नागालैंड के कोहिमा जिले के निरहमा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। कोई ये नहीं जानता था कि आगे चलकर इस बच्चे के कारण ही इस छोटे से गांव का नाम लोगों के बीच एक मिसाल बन जाएगा। वैसे इस बारे में किसी को उस समय क्या पता चलता। नन्हे नेकेजाकू कैंगुर से और उनके परिवार को भी इसका आभास न था। उनके पिता सरकारी विभाग में एक छोटी सी नौकरी में थे। कैप्टन नेकेजाकू कैंगुर से एक आम बच्चे की तरह ही अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे थे। कोहिमा साइंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद साल 1994 में वो कोहिमा के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक बन गए। एक आम व्यक्ति के तौर पर उनका जीवन बेहतरीन चल रहा था, लेकिन वो कोई आम इंसान तो थे नहीं। बस इसलिए उनके मन में एक उथल पुथल सी मची थी। उन्हें देश के लिए कुछ करना था, लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए पिता से उन्हें आज्ञा मिल ही नहीं रही थी। आखिर 3 साल बाद उनकी ये लगन रंग लाई और उनके पिता ने उन्हें सेना में जाने की इजाज़त दे ही दी।

मिकेज़ाकू केंगुरसे को वो मिल गया था जो वो चाहते थे। 12 दिसंबर 1998 को उन्हें भारतीय सेना की सेकंड राजपुताना राइफल्स में शामिल किया गया और आर्मी सर्विस कोर में कमीशन किया गया। इसका काम भारतीय सेना तक जरूरी सामान पहुंचाने का होता है। कैप्टन मिकेज़ाकू केंगुरसे की पहली पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर में। वो एक खुश मिजाज जिंदा दिल इंसान थे। परिवार में उन्हें प्यार से नेबू कहा जाता था और यूनिट में उनके साथ ही उन्हें नींबू साहब कहकर बुलाते थे। उन्होंने आते ही अपनी यूनिट का दिल जीतना शुरू कर दिया। उन्हें संगीत का शौक था। वो न सिर्फ एक बेहतरीन गायक थे बल्कि गिटार और ड्रम में उनकी उंगलियां जादू बिखेरती थी। वो सेना के कई कार्यक्रमों का हिस्सा बने।

ऐसा नहीं था कि कैप्टन कैंगूर से सिर्फ मनोरंजन में ही आगे थे, बल्कि वो एक अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और उससे भी बेहतरीन धावक थे, जिन्हें पकड़ना मुश्किल हुआ करता। एक खिलाड़ी होने के कारण वो बलिष्ठ और जोश से भरे होते। वैसे उन्हें ये जोश, जुनून और बहादुरी विरासत में मिली थी। कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे के परदादा निरहमा के महान योद्धा थे और उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर ही कैप्टन कैंगुरसे का बचपन बीता था। शायद यहीं से उनके मन में देशभक्ति की भावना जागी और देश के लिए कुछ कर गुजरने के दृढ़ संकल्प के साथ वो सेना में शामिल हो गए। कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे राजपुताना राइफल्स के साथ फरवरी 1999 से जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देने लगे। इसी बीच 28 मई को राजपुताना राइफल्स कारगिल के द्रास सेक्टर में एक ऑपरेशन के लिए निकल चली।

0.5140 तोलुलिंग का शिखर द्रास सेक्टर में एक बेहद महत्वपूर्ण और सामरिक रूप से बहुत जरूरी पॉइंट है। यहां दुश्मन सेना ने घुसपैठ की और अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि भारतीय सेना के कई जवानों ने अपनी शहादत देकर इस महत्वपूर्ण स्थान को दुश्मन सेना के कब्जे से वापस ले लिया था, लेकिन अब भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर दुश्मन की उपस्थिति थी। दुश्मन सेना थ्री पिंपल्स रिज पर अपना कब्जा जमाए बैठी थी। इसके अंतर्गत तीन पहाड़ी शिखर आते हैं, लोन हिल, नोल और थ्री पिंपल्स, जिन्हें ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये ऐसी जगह हैं जहां से कोई भी नेशनल हाईवे 1 पर अपनी नज़र जमा सकता है, और ये वो मार्ग है जहां से भारतीय सेना के लिए हर जरूरी चीज पहुंचाई जाती है। दुश्मन को भी सामरिक रूप से इस जगह की अहमियत पता थी और उसने यहां कब्जा कर भारतीय सेना के पास कोई भी सामान पहुंचने में बाधा

एक बड़ी शहादत देकर तोलोलिंग का शिखर तो वापस ले लिया गया था, लेकिन जब तक ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स से दुश्मन सेना को न खदेड़ा जाता तब तक ये जीत अधूरी थी। 25 जून 1999 को सेकंड राजपुताना राइफल्स को ये काम सौंपा गया। इसमें मौजूद थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक कैप्टन नेकेजाकू केंगुरसे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए राजपुताना राइफल्स ने बिना समय गंवाए तैयारी शुरू कर दी थी। थ्री पिंपल्स रीज के नीचे ही एक सुरक्षित स्थान काजल पर सेना का बेस बनाया गया, लेकिन किसी तरह दुश्मन सेना को इसकी भनक लग गई और उन्होंने भारतीय सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन राजपुताना राइफल्स अपनी रणनीति बनाने में लगी रही। कर्नल रविंद्रनाथ ने तय किया कि दुश्मन सेना पर एक नहीं बल्कि कई हमले एक साथ बोले जाएंगे और इसके लिए सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर उनके लक्ष्य निर्धारित किए गए।

सेकंड राजपूताना राइफल्स ने थ्री पिंपल सीरीज को जीतने का मन बना लिया था। इसकी रणनीति तैयार थी। तय किया गया कि सेना कई कंपनियों में बंटकर अलग अलग दिशा से एक साथ दुश्मन पर धावा बोलेगी। 28 जून को रात 8:30 बजे का समय इस हमले के लिए तय किया गया। बटालियन में अलग अलग कंपनी बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई। मेजर पद्म पाणी आचार्य को अल्फा कंपनी की कमान सौंपी गई, जो नोल को जीतने के लिए निकल चले। इस मुश्किल जीत को हासिल करते हुए मेजर आचार्य, कैप्टन विजयंत समेत कई सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। वहीं घातक कमांडो कंपनी की कमान सौंपी गई कैप्टन निकेजाकू केंगुरसे को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 25 साल के कैप्टन केंगुरसे उस समय सेना के जूनियर्स में से एक थे। उन्हें सेना में आए हुए तकरीबन 6 माह ही हुए थे। फिर उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? क्योंकि घातक पलटन की कमान सबसे बहादुर और तंदुरुस्त सैनिकों को ही सौंपी जाती है। घातक पलटन आम नहीं है, बल्कि उन्हें सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देना होता है। कैप्टन निकेजाकू केंगुरसे के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी कि उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने उसी समय ये तय कर लिया कि अब जीत किसी भी कीमत पर हासिल करना ही है। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।

जीवित भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नेके जाकू केंगुरसी की शौर्य गाथा। कैप्टन नेके जाकू केंगुरसी अपनी जीत सुनिश्चित करने की राह पर थे। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। ये एक ऐसा मिशन था जहाँ कुछ भी हो सकता था। हर जवान के मन में बस यही लालसा थी कि चाहे कुछ हो जाए, भारत भूमि को दुश्मन के पंजे से सुरक्षित करना ही हमारा लक्ष्य है। बस इसी जज्बे के साथ कैप्टन नेके जाकू केंगुरसी अपने पलटन के साथ निकल चले। उन्हें दुश्मन सेना को पीछे से घेरने का काम सौंपा गया, ताकि जब सामने से उन पर हमला हो तो वो भाग ही ना पाए, साथ ही उन्हें किसी तरह की कोई सहायता भी न मिल पाए। इसी बीच दुश्मन सेना की टोह लेने गए सिपाही ये खबर लेकर आए कि दुश्मन सेना के पास मशीन गन है, जिसे लेकर वो लोन हिल की एक अलग पोस्ट पर तैनात हैं और वहां से लगातार भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं। जब तक इस पोस्ट को कब्जे में नहीं लिया जाता, आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। तय किया गया कि कैप्टन नेके जाकू केंगुरसी अपनी घातक पलटन के साथ पहले इसी पोस्ट को कब्जे में ले, ताकि बाकी कंपनियां अपना काम कर सकें।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: केंगुर से को एक पतली पत्थर की दीवार नजर आई जो दुश्मन सेना से उन्हें बचा सकती थी। मशीन गन पोस्ट पर दुश्मन सेना के 7 बंकर मौजूद थे जिन्हें भारतीय सेना को नेस्तनाबूद करना था। इसके लिए चट्टान तक पहुंचना बेहद जरूरी था। कैप्टन केंगुर से अपनी पलटन के साथ आगे बढ़ रहे थे और उन्हें बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़नी थी कि काम यूं ही मुश्किल है और उस पर सिहरा देने वाली ठंडी हवाएं। ये सब सोचकर ही हम शायद इस काम को नामुमकिन मान लें, लेकिन वहाँ आप और हम नहीं बल्कि हमारे रण बांकुरे मौजूद थे जिन्होंने मुश्किलें देखकर पीछे हटना नहीं सीखा।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों के शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नीके जाकू कैंगुर से की शौर्य गाथा। June 28, 1999 सिहरा देने वाली ठंडी रात, चारों ओर अंधेरा और ऐसे में कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे के नेतृत्व में जाबाज जिंदा दिल और मौत से लोहा लेने वाली घातक पलटन चढ़ रही थी सीधी चढ़ाई। इसी पल दुश्मनों को इनकी भनक लग गई और उन्होंने अपने हथियारों के मुंह खोल दिए। अंधाधुंध बरसती गोलियां, खड़ी चढ़ाई, ठंडी रात, लेकिन फिर भी

दुश्मन के हमले से खुद को बचाते कैप्टन नीके जाकू कैंगुर से और उनकी घातक पलटन ऊपर चढ़ना जारी रखे थी। मानो उन्हें किसी बात का डर न हो, बस आंखों के सामने अपना लक्ष्य ही नजर आ रहा हो। सबसे आगे बढ़ते कैप्टन केंगुरसे ने पहाड़ पर कील ठोक कर अपनी पलटन के लिए रस्सी बांधी और सभी के पहुंचने का इंतजार किया। जैसे ही पलटन ऊपर पहुंची, दुश्मन सेना ने उन पर हमला बोल दिया। न सिर्फ गोलियां बल्कि भारी मोर्टार और ग्रेनेड भी उनकी ओर फेंकने शुरू कर दिए। इसी बीच एक फूटते ग्रेनेड का छर्रा सीधे कैप्टन नीकेजाकू केंगुरसे के पेट में जा घुसा। वो घायल हो गए। दर्द ने उन्हें कुछ पल को रुकने पर मजबूर किया और उन्हें ये आभास हुआ कि उनकी पलटन के कई जवान अपनी शहादत दे चुके हैं। कैप्टन नीकेजाकू केंगुरसे ने खुद को मजबूत किया और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं बल्कि अपने हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर बढ़ रहे थे।

एक सैनिक की बहादुरी और उसकी हिम्मत का कोई पर्याय नहीं है। जरा सोचिए कि ठंड से सिहरती रात में घायल लहूलुहान कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से अपनी पलटन को हिम्मत न हारने के लिए कोई भाषण नहीं देते, बल्कि वो अपनी हिम्मत उन सभी में प्रवाहित करते हैं। पेट के घाव और रिश्ते खून की परवाह न करते हुए वो वापस खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और हाथ में रॉकेट लॉन्चर का भार लिए। हम वहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन ये यकीनन कहा जा सकता है कि मात्र 25 वर्ष के इस युवा के हौसले और साहस के आगे दुश्मन भी भौचक्का रह गया होगा। कैप्टन नेके जाकू कैंगुरसे ने ऊपर पहुँचते ही दुश्मन सेना के पहले बंकर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। उनका ये हौसला उनकी पलटन में जोश भरने के लिए पर्याप्त था। सभी एक बार फिर आगे बढ़ चले। अभी दुश्मन सेना के 6 और बंकर मौजूद थे। खतरा और मुश्किलें भी एक पायदान ऊपर थी। कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से अपने घातक पलटन के साथ दुश्मन सेना के बाकी बंकरों की ओर बढ़ चले। इस बार सिर्फ खड़ी चढ़ाई ही सामने नहीं थी, बल्कि उस पर जमी बर्फ इस चढ़ाई को और मुश्किल बना रही थी। कैप्टन कैंगुर से ने देखा कि उनका बूट चढ़ाई में उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उन्होंने -10 डिग्री की उस ठंडी रात में अपना बूट उतार दिया और नंगे पैर चढ़ाई चढ़ने लगे। मानो लक्ष्य पाने का एक जुनून उन पर सवार था। सुन्न होते पैर, पेट का जख्म, ऊपर से आती मशीन गन की फायरिंग, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का हमला, कुछ भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो रहा था। वो बस चढ़ते जा रहे थे। उफ, ये हौसला, ये साहस और खुद पर इतना भरोसा एक बेहतरीन नेतृत्व की ही पहचान हो सकती है। जब ऐसा जोश सामने हो तो पूरी पलटन का दिल उस जोश के वशीभूत हो जाता है।

जैसे ही कैप्टन नेके जाकू कैंगूर से चढ़ाई चढ़कर दूसरे बंकर के पास पहुंचे कि दुश्मन सेना के दो सिपाही उनकी ओर लपके, लेकिन कैप्टन केंगुरसे से पार पाना किसी के बस में नहीं था। उन्होंने दुश्मन सेना के उन दोनों सिपाहियों को पलक झपकते ही हाथापाई करके अपने कमांडो खंजर से ढेर कर दिया। आगे उन्होंने दो और दुश्मन सिपाहियों को अपनी राइफल से मार गिराया। दुश्मन सेना का दूसरा बंकर भी नेस्तनाबूद किया, लेकिन अब भी दुश्मनों के 5 बंकर बाकी थे और उन्होंने दुगनी तेजी से हमला बोल दिया। सामने से आती धुआंधार गोलियों की बौछार को कैप्टन नेके जाकू कैंगूर से अपने सीने पर झेल गए और वीर गति को प्राप्त हुए। ये उनके अदम्य साहस का ही परिणाम था कि अपने सेना नायक को इस तरह शहीद होते देख पूरी पलटन में इतना गुस्सा और जोश भर गया कि उन्होंने दुश्मन से कम मात्रा में होने के बाद भी उन पर धावा बोल दिया। कई जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया, लेकिन उनके साहस और जोश के आगे दुश्मन सैनिक भाग खड़े हुए। जो वहां रुके उनके प्राण उनके शरीर का साथ ना दे सके।

नेके जाकू कैंगुरसे के जोश, साहस, बुद्धिमत्ता और सर्वोच्च बलिदान का ही परिणाम था कि दुश्मन सेना के मुख्य पोस्ट भारतीय सेना के कब्जे में आ गई और सेकंड राजपूताना राइफल्स ने लोन हिल में भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस जीत ने कारगिल विजय में एक बड़ी भूमिका निभाई। कैप्टन नेके जाकू कैंगुरसे ने जो आखिरी पत्र अपने पिता को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पापा, हो सकता है कि मैं वापस घर ना लौटूं और फिर से अपने परिवार का हिस्सा न बन पाऊं। अगर मैं वापस न भी आ पाऊं, तो मेरा शोक मत मनाना, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि मैं देश के लिए अपना सर्वस्व देना चाहता हूं।

कैप्टन नेकेजाकू केंगुरसे ने अदम्य साहस, अटल संकल्प, दृढ़ता और कर्तव्य से परे जाकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस शौर्य, अदम्य साहस और अद्वितीय कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आर्मी सर्विस कोर से महावीर चक्र पाने वाले एकमात्र सैनिक हैं। उनके सम्मान में एएससी कैंपस बेंगलोर के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम कैप्टन केंगुरसे गेट रखा गया है। कोहिमा के गांव में उनके नाम से कैप्टन केंगुरसे वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई है। सेना की ओर से प्रतिवर्ष कैप्टन केंगुरसे मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतिवर्ष कोहिमा में आयोजित किया जाता है। देश के इस जाबाज को हमारा भावपूर्ण नमन।

विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नेके जाकू कैंगुरसे की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हरि नारायण शर्मा की लिखी झलकी मैरिज एनिवर्सरी।
1: हे भगवान, ऐसा भुलक्कर और लापरवाह पति किसी को ना दे। सवेरे जब ऑफिस जा रहे थे कम से कम 10 बार जनाब को घर जल्दी आने को बोला था, लेकिन क्या मजा जो जनाब जल्दी घर आ जाए।
2: सीमा, सीमा, अरे भाई जल्दी दरवाजा खोलो, कहाँ हो?
1: चूल्हे में।
2: चूल्हे में? अरे वहां क्या कर रही हो? जल्दी बाहर निकलो वरना जल जाओगी।
1: मैं जलूं या मरूं तुम्हें क्या?
2: पर हुआ क्या है, जरा हम भी तो सुने कि ये त्योरियां क्यों चढ़ी हुई हैं।
1: तुम्हें कुछ याद भी रहता है, सवेरे जब तुम ऑफिस जा रहे थे तब मैंने कितनी बार कहा था कि घर जल्दी आ जाना, पर मेरी कौन सुनता है। बैठ गए फटीचर दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में।
2: तुम भी कमाल करती हो सीमा। अरे

0: ऑफिस से सीधा घर चला आ रहा हूं। ये देखो अभी सिर्फ 7 बजे हैं और 6 बजे ऑफिस से निकलता हूं, और ट्रैफिक की हालत तो तुम जानती हो, ऑफिस से घर आने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है।
1: अगर कैसे रह गई हो तो वापस चले जाओ।
0: तुम तो बस बात बात पे झगड़ना जानती हो। खैर ये बताओ कि मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा था? हाँ, और आज ये बंठन कर कहाँ जाने का इरादा है?
1: तुम्हें दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है? कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है?
0: तारीख भाई 24 अप्रैल।
1: हाँ 24 अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है?
0: 24 अप्रैल महत्वपूर्ण?

0: दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है? कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है?
1: तारीख भाई 24 अप्रैल।
0: हाँ, 24 अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है?
1: 24 अप्रैल महत्वपूर्ण? अरे हाँ, याद आया, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, यानी मैरिज एनिवर्सरी। अब याद आया कि आज आप मुझे ऑफिस से जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी, और आप ये सज धज कर क्यों बैठी हैं? भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
0: बस बस रहने दो।
1: अगर तुम सवेरे ही मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता।
0: अब मुंह देख के बात मत करो, जिस आदमी को अपनी शादी की सालगिरह की ही याद नहीं रहा है, उससे गिफ्ट की क्या उम्मीद की जा सकती है?
1: अच्छा बाबा, माफ कर दो, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, और कहो तो हमेशा की तरह कान पकड़कर उठक बैठक लगा लूं। अरे लगा ही लेता हूँ, इक्कम एक, दुक्कम दो, तिक्कम तीन।
0: अरे अरे क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
1: तो बोलो माफ किया।
0: अच्छा बाबा माफ किया।
1: हाँ ये हुई ना बात। अब जरा मेरे पास में बराबर में आके बैठो ताकि हम आज का प्रोग्राम तय करें।
0: अच्छा पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है।
1: अरे फिर तुम वहाँ मुड्ढी पर क्यों बैठी हो, यहाँ सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना।
0: नहीं नहीं, मैं भला आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ?
1: क्यों मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती?
0: अभी कल ही मैंने गुरुजी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का बैठने का स्थान पति से नीचा होना चाहिए, और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों की दासी होती है।
1: हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? देखो सीमा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या तुम वही सीमा हो जिससे मेरी 30 साल पहले शादी हुई थी?
0: मैं तुम्हारी वही 30 साल पहले वाली सीमा हूँ।
1: देखो सुमा, तुम ये किन दकियानूसी बातों को लेकर बैठी हो, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, और वैसे भी पति पत्नी तो गृहस्थी की गाड़ी के तो पहिए हैं, अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो ये समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है।
0: अब तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती।
1: ठीक है, अगर तुम सोफे पर मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती तो मैं दूसरी मुड्डी लेकर तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊंगा।
0: अगर तुम मुड्डी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी।
1: अच्छा, और अगर मैं भी चौकी पर बैठ गया
0: तो मैं पीढ़े पर बैठ जाऊंगी।
1: और अगर मैं भी पीढ़े पर बैठ गया
0: तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी।
1: और अगर मैं भी जमीन पर बैठ गया
0: तो मैं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी।
1: और अगर मैं भी जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ गया
0: तो मैं तुम्हारे ऊपर उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगी।
1: क्यों
0: नहीं तो क्या, इतनी देर से बहस किए जा रहे हो, ये नहीं कि आज का प्रोग्राम क्या है बताओ।
1: अरे हाँ, इस बेकार की बहस में मैं ये तो भूल ही गया था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ देखो, अभी बजे हैं 7:30। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे।
0: पिछले साल भी तो हमने यही किया था, इस बार मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ।
1: सोच तो मैं भी कुछ नया ही करने की हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताओ तुम क्या नया सोच रही हो।
0: मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ बनाया जाए।
1: हाँ भाई, ये भी अच्छा आइडिया। तो क्या खास बनाने की सोच रही हो?
0: अब तुम्हें तो पता ही कि मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ।
1: हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मलाई कोफ्ता और मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हो।
0: तो ठीक है, तय रहा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, मैं घर पर ही मलाई कोफ्ता, मटर पनीर की सब्जी और कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ। तुम हलवाई से 1 किलो रसमलाई और 1/2 किलो बादाम रोल ले आओ, और हाँ चॉकलेट आइसक्रीम का एक फैमिली पैक लाना मत भूलना।
1: एक मिनट सीमा, तुम शायद ये भूल रही हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं।
0: मुझे पता है।
1: अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो?
0: मैं सोच रही थी कि हमारी शादी की सालगिरह के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए।
1: यानी घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेती हो।
0: मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और पिछली बार शादी की सालगिरह पर तुमने भी तो अपने भैया भाभी को बुलाया था, उसकी क्यों नहीं कहते? वैसे भी तुम्हें मेरे रिश्तेदार फूटी आंख नहीं सुहाते।
1: झूठ, बिल्कुल झूठ। देखो मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों की बजाय तुम्हारे रिश्तेदारों की ज्यादा इज्जत करता हूँ।
0: जरा मैं भी सुनो कि मेरे कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो।
1: देखो मैं अपने ससुर की बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ,

0: सास की बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी बहन की बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ।
1: ठीक है, अपनी चौंच बंद करो और चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान कहा है वो ला कर दो। और कान खोल कर सुन लो, अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरुजी के प्रवचन में सुनी हुई बातों को भूल जाऊंगी।
0: हाँ ठीक है, लाओ थैला और पैसे दो।
1: ये लो थैला। हाँ, पैसे मेरे पास है नहीं।
0: क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं है? अरे अभी परसों ही तो मैंने तुमको 3,000 रुपए दिए थे।
1: हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 3,000 नहीं 30,000 दिए हो। अरे 3,000 रुपए में तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। वो 3,000 रुपए तो हमारी किट्टी पार्टी में उसी दिन खर्च हो गए थे।
0: क्या, तुमने किट्टी पार्टी में 3,000 रुपए खर्च कर दिए? अरे सीमा, कितनी बार तुमको समझा चुका हूं कि पैसे देखकर खर्च किया करो। अरे तुम एक क्लर्क की बीवी हो, किसी आईएएस की नहीं।
1: अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए आईएएस ही ढूंढ रहे थे, पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी कर ली।
0: अरे तो ना करती, कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था?
1: देखो झूठ मत बोलो, तब तो रोजाना सुबह शाम मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा की चौखट पर नाक रगड़ा करते थे।
0: झूठ, सफेद झूठ। बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौखट उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। अरे ये तो मेरी किस्मत टूटी थी जो उनकी बातों में अगर तुम्हारे जैसी भैंस से शादी करनी।
1: क्या कहा, मैं भैंस?
0: हाँ, तुम भैंस, तुम्हारी अम्मा भैंस और तुम्हारा पूरा खानदान भैंस।
1: अब खबरदार, जो मेरे खानदान के लिए कुछ जबान खींच लूंगी।
0: अरे जा, बड़ी आई जबान खींचने वाली, भीमसेन की औलाद।
1: क्या कहा, भीमसेन की औलाद?
0: हाँ, भीमसेन की औलाद।
1: तो ठीक है, अब मैं तुम्हें भीमसेन की औलाद बनकर दिखाती हूँ। कहो है मेरा झाड़ू? अरे कहा? हाँ ये रहा।
0: अरे बचाओ, भागो,
1: कहा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगी तुमको।
2: अरे सीमा बहन, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ जा रही हो?
1: जहन्नुम में।
2: क्यों, तुमको जहन्नुम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई?
1: वो गुड्डू के पापा गए हैं ना, उनको लेने जा रही हूँ।
2: पर गुड्डू के पापा वहाँ क्यों गए हैं?
1: आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो मेरे लिए बड़ा सा गिफ्ट लेने गए हैं।
2: पर सीमा बहन, आपके लिए तो हरीश भैया गिफ्ट पहले ही ले आए थे।
1: क्या, मेरे लिए गिफ्ट?
2: हाँ, ये देखिए, हरीश जी कह रहे थे कि आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, इसलिए मेरे पास रखवा दिया था। और कह रहे थे कि मैं आधे घंटे बाद आकर आपको दे दूं।
1: क्या वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे?
2: हाँ, और ये भी कह रहे थे कि पहले होटल में खाना खाने जाओगे आप लोग, और फिर उसके बाद मूवी का प्लान है।
1: क्या उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और मैं इतनी छोटी सी बात पर उनसे झगड़ा कर बैठी?
2: क्या आज के दिन झगड़ा? ऐसा क्या हो गया?
1: अब क्या बताऊं सरला बहन, उन्होंने बाहर खाने और मूवी का प्रोग्राम बनाया था और मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए। हे भगवान, मैं क्या करूं?
2: क्या तुम इतनी सी बात के लिए हरीश भैया से झगड़ पड़ी? अरे सीमा बहन, और वैसे भी आज तो ये दिन तुम्हारा है, आप दोनों को एंजॉय करना चाहिए। भैया भाभी को बुलाने के लिए तो रक्षाबंधन भाई दूज के त्योहार है ना।
1: मैं भी कितनी पागल हूँ जो आज के दिन उनसे झगड़ा कर बैठी। हे भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूं।
2: सीमा बहन, तो आपको वाकई आपकी बातों पर पछतावा हो रहा है?
1: हाँ सरला बहन, मैं उनसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं?
0: अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है।
1: तो जनाब यहाँ छुपे हैं?
0: हाँ। अरे अब तुमको छोड़कर इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था।
1: तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? ओ हरीश, तुम कितने अच्छे हो।
0: अरे अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे चक्कर में 8 बज गए हैं, और अब जल्दी चलो।
1: अरे सरला बहन, तुम भी चलो ना।
2: सीमा बहन, अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि आज का दिन तो आप दोनों के एंजॉय करने का दिन है। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जाइए और जल्दी जाइए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए।
3: थैंक यू सर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम की शुरुआत फिजा फिल्म के गाने से, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, गुलजार के बोल, अन्नू मलिक का संगीत।

कल हो ना हो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

यमला पगला दीवाना टू इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में कुमार के बोल थे। फिल्म है ओम शांति ओम। शान उदित नारायण श्रेया घोषाल सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

ओम शांति ओम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। ये सिंगम फिल्म का गाना है, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अजय अतुल का संगीत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान

0: संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है।

0: अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
1: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। श्रोतियों हुन समाए प्रोग्राम आपके लिए दा। इस प्रोग्राम में से आकाशवाणी दे मुंबई के अंदर तुम रिले करांगे।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की बोल थी, ओपी नैयर का संगीत था। दोस्तों, आज जाने माने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की याद का दिन है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम। अगला गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म पेइंग गेस्ट।

आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत था। दोस्तों आज जाने माने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की याद का दिन है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम। अगला गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म पेइंग गेस्ट।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी ममता।

0: साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रे बापा मामा गागा।

0: आएगा।
1: 16 साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदर

मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे ये वो कैप्सूल।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए। इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

दुनिया की जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर पड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले सब कुछ, सिर्फ तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है मन के भीतर। दुनिया के लिए मुस्कान हमारा परचम है।

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चनें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

0: और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता
1: माना तेरी नजर में।
0: आज का चाय गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां नाल सजिया प्रोग्राम सुरसांझ। ते अज दे प्रोग्राम विच ने कुछ पंजाबी फिल्मी गीत। हुण गीत शायर फिल्म तो सतिंदर सरताज दी आवाज विच, बोल सतिंदर सरताज दे।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोतियों आज दे प्रोग्राम सांझ दा अगला गीत तुसी सुनोगे हरभजन मान ते रानी रणदीप दी आवाज़ां विच मेरा पिंड माय होम फिल्म तो बोल बाबू सिंह मान दे ते संगीत बबलू कुमार दा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा

और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से

0: कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ।